0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवत गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जाने और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: हंसते मुस्कुराते चेहरे वाकई दिल के करीब हो तो मुझे लगता है कि आपके दिन बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। और ऐसी शख्सियत, हंसती मुस्कुराती शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है। राम राम दोस्त, आप सत श्री अकाल, आदा, मैं हूं नाची सरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं मेरे खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। चलिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था उसका इशारा यूं है कि मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका नाम है रूही हक। आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं लॉस एंजलिस से और आर्मी बैकग्राउंड से आप आते हैं। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है और यही एक वजह है कि वो खूबसूरत झलकती है इनके काम के माध्यम से। साथ ही साथ एक एनजीओ भी आप रन करती हैं, होप बी लिट, आप उसके फाउंडर हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेती हैं। और

0: आप एक फिल्म मेकर हैं, अच्छी लेखिका हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रूही हक जी।
1: आपका बहुत आभार।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बहुत अच्छा, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। शाम में कहीं कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? ठीक है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये जो हंसने की जो अदा है, हंसते मुस्कुराते आप लोगों को कनेक्ट कर पाती हैं, लोगों से जुड़ पाती हैं, मुझे लगता है कि जब आपके साथ लोग जुड़ते होंगे तो निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर आप मुस्कान ला पाते होंगे अपने काम के माध्यम से। जिस तरीके से आपने हमें बताया कि आप एक एनजीओ रन करती हैं, तो प्लीज बताइए अपने बारे में, उस एनजीओ के बारे में।
1: डेफिनेटली होप बिलर जो मेरा एनजीओ है, जिसका मतलब है कि उम्मीद हमेशा कायम रहे सब में, वो एक ग्लोबल एनजीओ है, लॉस एंजलिस बेस्ड है, लेकिन हमारा काम एक्चुअली हर कॉन्टिनेंट में हो चुका है। हम लोग अफ्रीका जा चुके हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑब्वियसली हम वहाँ बेस्ड हैं, और इंडिया में भी हमारे बहुत काम चलते हैं। और अभी हमारा रुख मेंटल हेल्थ की ओर जुड़ा है, बिकॉज सोशल मीडिया, जैसे कि आप जानते हैं, कि एपिडेमिक बनता जा रहा है अमंग्स द यूथ, तो हम उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ वेलनेस पे फोकस किया जाए। तो अभी हमारा जो नया विंग है वो उस पे काफी फोकस्ड है।
0: क्या बात है, बातों बातों में लिसनर्स एक इशारा हो चुका है कि जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूही हक जी। बहुत सारी बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर रोशादा 90.8 FM विद मी मेरियानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी का हम जिक्र करते हैं यानी कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते समुदाय की बातें हम कर रहे होते हैं और इसी संबंध में बात करने के लिए आज एक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप हैं रूही हक, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस्ड इनकी कंपनी है और आप ग्रेटर नोएडा में हैं। और इस वक्त बहुत सारी बातें, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी, इनका जो एक एनजीओ है वो रन करती हैं होप बी लिट, जो कि एक सामाजिक सरोकार रखता है। और इस संबंध में जैसे कि मैं बात कर रहा था ऑफेयर कि ये लोगों के बीच में जाती हैं, उनके हक की बातें होती हैं, कहीं अंधेरा आए तो उसकी ज़िंदगी में उजाला लगाने का काम करती हैं, उजाला लाने का काम करती हैं। तो जो एक विषय था, जो एक टॉपिक था, इशारा था कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो रूही जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब आपको लगा कि मानसिक स्वास्थ्य के विषय में मुझे बात करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए? आपने ये भी मुझे बताया था कि इसके बारे में आपने एक कोर्स किया है और सीखने समझने के लिए आप बाहर भी गए। कितना समय आपको उस कोर्स में लगा और क्या आप महसूस करती हैं कि किस वजह से लोगों का स्वास्थ्य डिस्टर्ब है मेंटल हेल्थ के लिए?
1: तो हमारे मेरा जो नॉन प्रॉफिट है उसमें 3-4 विंग्स हैं और एक ओरल हेल्थ हमारा एक फोकस रहा है जिसमें कोलगेट, हेनरी शाइन जैसे बहुत बड़ी कंपनीज जुड़े हैं। मैंने देखा था कि ओरल हेल्थ में ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, सिर्फ बताया जाता है क्या बीमारी है। तो वो हमारी शुरुआत थी और हम लोग लॉस एंजलिस स्कूल्स में ह्यूमन वैल्यूज़ विद एजुकेशन पे भी काम कर रहे थे। अब इस सब के दौरान जब हम मेंटल होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, हमने देखा कि कैंप्स में हम बाकी सर्विसेज फिजिकल फोकस दे रहे थे और मेंटल एपिडेमिक बहुत ही ऑब्वियस वे में, जो कि अभी आप देख रहे हैं दुनिया के हालात हैं, बहुत डिस्टर्बिंग रहता है। और एक सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में आई एम श्योर कि सब लोग कनेक्ट होंगे कि जब आदमी स्क्रोल करता है तो उसकी जो न्यूरोलॉजिकल सेंसेस हैं वो कितने सेंसरी चेंजेस उसमें होते हैं, ये जब आप रिसर्च करेंगे तो यू विल बी रियली शॉक्ड। और वो सब मैं उसमें घुसी क्योंकि मैं जब काम कर रही थी गाँव में या शहर में बच्चों के साथ, यूथ के साथ, पेरेंट्स के साथ, मैं देख रही थी कि मेंटल हेल्थ जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो एज एन एपिडेमिक बढ़ता ही जा रहा है। बिकॉज फिजिकली तुम टच करके निकल सकते हो लेकिन मेंटली बहुत चीजें फिजिकली आपको अल्टीमेटली यू नो इफेक्ट करती हैं। तो जड़ से उस चीज को उखाड़ने के लिए दोनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और सोशल मीडिया आजकल जो कि एक यू नो बून है हैज आल्सो बिकम अ कर्स। इट्स अ वेरी थिन लाइन। तो वो थिन लाइन पे मुझे फिर जब फोकस हुआ तो मैंने कहा फिर मेंटल हेल्थ, ब्रेथ वर्क जैसे हमारे प्राणायाम है, मैं योगा टीचर रह चुकी, मैंने ऋषिकेश में किया हुआ है। लेकिन वो क्या होता है कि इंडिया में हम बहुत वास्ट, अब कौन सा बच्चा इतना लंबा प्राणायाम का कोर्स करेगा, बट एक सोमैटिक ब्रेथ वर्क, मैंने रेफ्यूजी कैंप्स में काम किया है तो जैसे बॉम्ब के बाद पैनिक होता है उसमें कितने सिंपल ब्रेथ टूल्स कितना इम्पैक्ट करते हैं, लोगों की जनरेशनल ट्रॉमा कैसे आती है। तो ये सब बेसिक चीजें जो कि 3-4 मिनट में आप एक दो चीजें छोड़ के जा सकते हो, मुझे वो बहुत इंटरेस्ट आया और मैं उसमें फिर मैंने 3-4 कोर्सेस किए।
0: सो लिसनर्स, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जिक्र हुआ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में और बात हुई योग के बारे में। सच बात तो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी में अगर आपने संतुलन नहीं बनाया तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने बहुत ज्यादा आ सकती हैं। और जब योग का जिक्र हुआ है तो मैं कहूंगा कि आप योग करिए, अपने आप को निरोग रखिए और देखिएगा कि जिंदगी पहले से बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आप रुपया कमाएं, आप ये भूल जाते हैं भागती दौड़ती जिंदगी में कि आपकी सेहत आपसे दूर जा रही है, कोसों दूर जा रही है, और वही रुपया आपकी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए खर्च होता है जब आप बीमार होते हैं। और ऐसे ही आप मानसिक बीमार हैं, मानसिक रोगी हैं। इसी संबंध में बात करने के लिए यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं रूही हक जी। बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है सो कहीं जाएगा मैं सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ये है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ और एक्सपर्ट के तौर पर आज मेरे साथ जुड़ रही हैं रूही हक जी, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस इनकी कंपनी है और कश्मीर से ताल्लुक रखती है। साथ ही साथ आर्मी बैकग्राउंड से भी आप आते हैं और खुद का एक एनजीओ है जिसका नाम है होप बी लिट। आप उसकी फाउंडर हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, बच्चों के बीच में आप जाती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो एक बार फिर से रूही जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में जाती हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके दुख को आप पहचानती हैं, उनके दुख को दूर करने का काम करती हैं? मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं कि आप लोगों के बीच में रोशनी लाने का काम करती हैं और सच में आप रोशनी ला रहे हैं, क्योंकि आपने हमें बताया था कि आप लोगों के जहां लोग रहते हैं वहां अंधेरा है, वहां लाइट्स नहीं है, आप लाइट तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकता हूं कि आप नो डाउट कि आप लोगों के जीवन में रोशनी ला रहे हैं। तो कैसा फील करते हैं जब आप लोगों से मिलती हैं धरातल पर ऑन ग्राउंड?
1: तो एक चीज मैंने देखी है कि क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे तो हम हर दो साल में नए शहर जाते थे, तो वो अडेप्टेबिलिटी बहुत आनी पड़ती है, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। हर दो साल आप नए लोगों से मिलते हैं और नए लोगों की कल्चर और उनके अलग दुख और उनके अलग सुख वो सब देखना पड़ता है। तो इसी के साथ में बड़ी हुई और फिर कहीं भी जाना, किसी भी देश में जाना, बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग आती है कि सभी अपने हैं। यही सिखाया जाता है फौज में कि हम सभी एक देश के हैं और सभी अपने हैं। बट ये मैंने नोटिस किया कि हम लोग जब से रोड में भी चलते हैं या कहीं पे भी होते हैं, अगर हम अपने कम्युनिटी में ही देखें तो हमें बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगे जो कि काफी लोग इग्नोर करते हैं। तो आई थिंक वही मैंने इग्नोर नहीं की और इसलिए मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। जैसे मैं कनॉट प्लेस में थी और वहां मैंने ये जगह देखी जो कि एक इतनी लिट अप एरिया के बीच में है और इतने अमीर एरिया के बीच में, और वहां पे सवेरे जाने के लिए आपको अपने फोन के टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। और जब आदमी का दिमाग एक इतने उजाले से, वो भी यू नो मई की धूप में दिल्ली में एक अंधेरे गली में जाता है 12 बजे दोपहर को, वो भी एक जारिंग मेंटल एस्पेक्ट होता है। तो वो मैं इतनी बार गई वहां कैंप करने, मैंने वहां ओरल कैंप किया, हेल्थ कैंप किया, लेकिन ये लाइट मुझे हमेशा खटकती रही और मैं उनसे पूछती रही कि आपको क्यों नहीं खटक रही है। तो लोगों ने कहा कि हाँ आदत हो गई है, लेकिन ऐसी आदतें क्यों हम डालें। तो मैं सोच रही थी पहले कि गवर्नमेंट से बात करूं, क्या करूं, लेकिन फिर मेरे को सोलर लाइट का आया, बिकॉज सस्टेनेबल एनर्जी वैसे भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और इसमें किसी को बिल नहीं आता है और धूप यहाँ बाकायदा रहती है। तो मैंने बहुत सारे पैनल्स और ये सब में हमने ट्रायल किए, क्योंकि मैं खुद, मेरे को केबलिंग वगैरह का बहुत शौक है और इस कॉलोनी में इतने केबल्स हैं

0: साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। मैं समझता हूँ कि ये जो पहल होती है वही एक टफ समय होता है। जहां एक शुरुआत हो जाती है तो निश्चित तौर पर 10 लोग आप महसूस करते होंगे कि 10 लोग आज आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वही कश्मकश में अगर इंसान रुक जाए, थम जाए, बैठ जाए, तो मुझे लगता है कि उसका जो सपना है वो सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। अरुई जी, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कुछ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि जब आप इन लोगों के बीच में जाती हैं तो किस तरीके की दिक्कतें, परेशानियां इनके सामने और आती हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ का जो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो कोई एक ऐसा गाना जब आप बहुत परेशान रहती हैं, दिल को सुकून चाहती हैं, म्यूजिक के आसपास आप रहती हैं क्योंकि आप एक फिल्म मेकर हैं, तो एक गाना जो आप हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ वही गाना हम आपके लिए, अपने लिसनर्स के लिए प्ले करेंगे।
1: मुझे तो बहुत पुराने गाने पसंद है,
0: चलेगा,
1: तो वो है ना, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, वो मेरा बहुत फेवरेट।
0: बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है। तो चलिए दोस्तों, ये गाना हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। आप एनजीओ रन करती हैं, आप उसकी कर्ता धर्ता हैं, यू कहें अंग्रेजी में तो फाउंडर हैं। एनजीओ का नाम है होप बी लिट और आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यानी कि एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लॉस एंजलिस बेस्ड आपकी कंपनी है और कश्मीर से आप ताल्लुक रखती हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। और वही जो खूबसूरती है वो आपके अंदर व्यक्तित्व में झलकती है कि लोगों से मिलना, बातचीत करना, उस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना। आप है रूही हक जी, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। क्या महसूस करती हैं जब आप धरातल पर जाती हैं, ऑन ग्राउंड जाती हैं, कि उनकी क्या क्या

0: दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो मानसिक अस्वस्थ हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, वो चाहे रुपयों की बात हो, चाहे वो एक लाइट का एग्जांपल हो जैसे आपने हमें खुद बताया, इसके अलावा पढ़ाई की बातें हैं, घर गृहस्थी की बातें हैं, घरेलू हिंसा है, तो किस तरीके से उनको आप दूर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं?
1: मैं साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने थेरेप्यूटिक टूल्स किए हुए हैं, तो ये जो टूल्स होते हैं वो ज्यादा आई थिंक ईजी होते हैं टू मैनेज, बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है आज की डेट में. तो वो टूल्स सिंपल एक राय होता है, जैसे मैं से अफगानिस्तानी वुमेन, या फिर अभी रेफ्यूजी कैंप्स में हम लोग जॉर्डन में थे मिडल ईस्ट में, तो वहाँ की औरतों के साथ अगर वो एक रोर होता है, ये सिंपल टूल्स होते हैं जो कि मतलब पीपल यू नो पीपल कैन गूगल, इससे इतनी यू फील सो इंडिपेंडेंट बिकॉज यू जस्ट स्पेंड टू मिनट्स डूइंग दैट लिटिल थिंग. तो ये जो टूल्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं और गूगल करके लोगों को मिल सकते हैं. बट मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो जब हम लोग खुद ग्राउंड पे जाते हैं तो हमारे खुद का मानसिक स्वास्थ्य, बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रांग, किसी का दुख देखना इतना आसान नहीं है, स्पेशली क्योंकि उसको वो दुख हो रहा है, उसको वो तकलीफ हो रही है और आप सिर्फ देख रहे हैं. तो दोनों जगह ये चीजें कायम रहती है कि आपको अपना मानसिक स्वास्थ्य पहले तो ठीक रखना पड़ता है, यू हैव टू रिमेन स्ट्रांग. जैसे मैंने रेप के ऊपर जब मूवी बनाई थी लोगों ने कहा आपका रेप हुआ क्या, जब मैंने कैंसर के ऊपर बनाई तो बोला आपको कैंसर था क्या, तो वो ये ना कि तुमको नहीं होता है फिर भी वो फीलिंग
0: करना पड़ता है,
1: फील करना और करना चाहिए. हम इंसानियत तो वही है,
0: तभी काम कर पाएंगे,
1: तभी काम कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या लेवल है उसके पेन का, एंड यू कैन नेवर बी इन देयर शूज, उनका जो उनके साथ चल रहा है. और मानसिक स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड मेंटली अनस्टेबल है और बहुत ऑब्वियस चीज है. आजकल सटली सबके मानसिक में एंग्जाइटी और सोशल नर्वसनेस, आप देखिए कि इंटरनेट नहीं होने से क्या पागलपन होता है किसी के घर में, जबकि खाना नहीं मिलने से वो पागलपन मैंने नहीं देखा है.
0: सही कह रहे हैं.
1: तो ये जो चीजें हो रही हैं इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. और आज का जो जेंजी और जो यूथ है वो सबसे ज्यादा इससे सफर कर रहे हैं, बिकॉज जो एडल्ट्स हैं वो उसको इतनी खुद वो व्हाट्सएप की दुनिया में खोए हुए हैं.
0: मैं इसी बात पर आ रहा था, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी में, हम खाना खा रहे हैं, इवन हम बड़े हैं, हम अपने आप को छोड़ते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे इतने आदी हो चुके हैं, अगर बच्चा हमारा रो रहा है हम उसको मोबाइल दे देते हैं, वो चुप हो जाता है और ये जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है. अब मैं बड़ों की बात करता हूँ, आप और हम बैठे हैं, आप प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे जरा सा भी गैप मिल रहा है, मैं सोशल मीडिया की तरफ जा रहा हूँ, मेरे बॉस का कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं से कोई कॉल तो नहीं आया, कहीं से कोई मैसेज मिस तो नहीं हो गया, ये जो सोशल मीडिया का हम से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, तो कितना सही है कितना गलत है, कैसे हम अपने आप को इससे बचा कर रखें ताकि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग रहे?
1: ये बहुत ही थिन लाइन है, बिकॉज हम खुद उन बच्चों को बोल रहे हैं कि पढ़ाई के लिए भी वहीं जाओ जहाँ पे इनको बाकी सारी चीजें मिल रही हैं. और इसलिए साइबर ट्रोलिंग, राइट, बिकॉज आपको इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए क्या कहा मेरे पोस्ट पर, ये कब रेलेवेंट हो गया इतना ज्यादा, ये कितनी जल्दी इतने सालों में पार हो गया हमें पता भी नहीं चला. करेक्ट. और वो व्यूज सही भी हैं, गलत भी हैं, आजकल तो फेक भी हैं, और ट्रोलिंग फेक है, और अब AI आ गया है, तो AI बेस्ड हमने देखा है अमेरिका में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग और एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, बिकॉज AI कैन डू एनीथिंग, इट कैन पुट यू वेयर यू वर नेवर देयर, और वो कितना डेंजरस है. और इसलिए हम लोग इसमें जाना चाह रहे हैं कि हाउ यू कैन पुल दोज डाउन, जो चीज ऊपर जा सकती है इंटरनेट पे वो नीचे भी आ सकती है, ये वो एक्सटॉर्शन करने वाला भूल जाता है, लेकिन जो विक्टिम है वो ना भूले, वो एफर्ट है हमारी. अब
0: फाइनली अगर मैं इस रैप अप करूं इस प्रोग्राम को, फाइनली आपकी तरफ से अंत में क्या संदेश होगा, हमारे जो लिसनर्स हैं क्या कहना चाहती हैं और किन भविष्य की योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, तो बस आप अपनी बात रख सकते हैं.
1: डेफिनेटली हमारा इनफैक्ट होने वाला एक कुछ इवेंट्स हम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया और ग्लोबली ऑल्सो, और एक व्हाट नाउ फाउंडेशन करके है जो मुंबई बेस्ड है. डेफिनेटली प्लीज अपने यूथ को बोलिए कि दे लुक इट अप, एंड वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, पुलिस सपोर्ट दे रहे हैं और साइबर सेल सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि अगर कोई एक्सटॉर्ट हो रहा है तो वो चुप ना रहे, पेरेंट्स के साथ मिले, अपने शेयर करे, बिकॉज वो सबसे पहला डर होता है कि ये मैं नहीं थी लेकिन कौन मेरा विश्वास करेगा, ये मैं नहीं था और कौन मेरा विश्वास करेगा, तो पहले वो उनके पास जाए, उनसे मिले, काउंसलिंग ले खुद की, और फिर यू नो पुलिस के पास जाए, और ये चीजें हटाई जा सकती हैं, मिटाई जा सकती हैं. Technical tools are as powerful for the evil as they are for the good.
0: So how to connect?
1: What now और Hope Billet दोनों के social media पे जाएं. वहाँ पे कुछ numbers भी local दिए गए हैं जो कि वो call कर सकते हैं and support will start right there.
0: ठीक है, सोशल मीडिया का कोई लिंक अगर आप शेयर करना चाहें, कोई पर्टिकुलर कोई नंबर हो जो आप बताना चाहें जिसके जरिए,
1: तो Hope Billet they can go on Hope Billet @HOPEBLIT and they can also go on @WHTNOW ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे नंबर्स मिल जाएंगे, दे कैन रीच अस, मैसेज अस डायरेक्टली. मेरा खुद का अकाउंट है @RUHELZ, जिसका नाम है रू हील्स. कोशिश जारी है हीलिंग की, खुद की भी और लोगों की भी. तो वहां पे जुड़े और मैसेज करें और उनको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा.
0: हमारी दिली दुआएं आपके साथ हैं. आप यूं ही निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप लोगों के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं. वाकई बहुत नेक काम कर रहे हैं. मेरी दिली दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ.
1: थैंक यू सो मच. आप गगन है तो हम रू हैं.
0: हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे. तो मेरे साथ लिसनर जुड़ी रही रूही हक, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लॉस एंजलिस बेस आपकी कंपनी है. और जैसे कि मैंने बताया कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और होप बी लिट एनजीओ आप रन करती हैं. और बहुत अच्छा विषय जिस पर हमने बातें की, मेंटल हेल्थ के बारे में. ये विशेष कार्यक्रम, ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं. इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं. और कभी मुलाकात करना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. हम दोनों को दीजिए अनुमति. नमस्कार.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें

पत्नी की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
1: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
0: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
1: बहुत मजा आएगा।
2: हाय तारा।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
1: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
2: अरे तारा ये क्या?
1: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी
5: जल रक्षक
4: खुद निगरानी।
1: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
1: और नल या पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे,
1: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: चलो चमन अब हम खेलें।
1: ओके। तारा मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
0: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खड़ी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
1: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
0: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
1: हैं?
0: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
2: अरे बाबा रे, तो फिर

0: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
1: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
1: अप्पा।
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया। अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
3: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
4: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है?
2: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
4: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो। आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरक्षा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

क्या बात है, डूबा रहे तेरे इश्क में। राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में नमस्कार, 12 मिनट हो चुके हैं, 18 तारीख है यानी कि फ्राइडे का दिन, शुक्रवार का दिन। क्या है खास जाने के जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद टर्न को एनीवे एटीट्यूड ऑल योर सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। एंजॉय करिए ये ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूँ सार, मिलिए डॉक्टर से, न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: हाय मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
5: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो, तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
6: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ स्टूडियो की घड़ी में नमस्कार। 19 मिनट 18 तारीख यानी कि शुक्रवार का दिन। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है और यही एक वजह है कि सुरु शारदा 90.8 एफएम हमेशा आपको अप टू डेट रखने के लिए अपडेट रहता है। अजय वाह क्या बोल दिया वाह वाह वाह वाह वाह वाह मतलब आई हैव वन आइडिया। हाँ मैं तुम्हें उज्बेकिस्तान भेज के मानूंगा। क्यों? देयर इज अनदर वन शाखा फ्रॉम शारदा विश्वविद्यालय। ये क्या होगा? ये प्रमोशन होगा, डिमोशन मत समझो बेटा। घूमी घूमी मिलेगी, खाने को मिलेगा नया वातावरण। आज ही ये क्या?

0: डिप्थीरिया, टाइफाइड, आईफाइड, नहीं आईफाइड नहीं होता, अच्छा आईफाइड से मतलब आंखों की दिक्कत ही आई। तो कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।
1: आए है
0: नहीं जाएंगे, कोई बुलाओ तो सी हमें।
1: चलिए, हम आपके दिल में रहना चाहते हैं, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। कैसा लगता है ये प्रोग्राम बताएगा जरूर डॉन गो एनीवेयर इंस्टीट्यूट ऑल योर सुरुशाता 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जाने। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। चलिए, हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आएगी। यातायात के नियम कानून का अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। लेकिन अक्सर हमने लोगों को देखा है कि जहां रास्ता कंजेस्टेड है, छोटा सा रास्ता है, वहां गाड़ियों को ओवरटेक कर हम दो तीसरी लेन बना देते, सामने वाले को निकलने का रास्ता देता ही नहीं है। जब आप रास्ता देंगे ही नहीं तो जाम वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें इनको नजरअंदाज ना करेगा। जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रहा हूँ, ट्रैफिक का जिक्र कर रहा हूँ, तो जाम की स्थिति बनी हुई है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि दिल्ली की जो बसें हैं यानी डीटीसी बसें जो हैं, वहां पर एक हड़ताल चल रही है। ड्राइवर्स की हड़ताल है, स्ट्राइक है और तीसरा रोज है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और जिसकी वजह से वैकल्पिक रास्ते या वैकल्पिक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई जो ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो है, ऑटो है, ओला है, ऊबर है, रैपिडो है या EMU का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां 20 रुपए का सफ़र है तो सपोज करिए कि 100 रुपए उनको देने पड़ रहे हैं। सोचिए, जिसकी छोटी सी जॉब है, छोटी सी तनख्वाह है, 3 दिन में उनको कितना बड़ा लॉस हो रहा होगा। और हो सकता है कि जो ड्राइवर्स हैं उनकी अपनी जो बातें हैं वो भी वाजिब हैं, लेकिन कुछ बातें मान ली गई हैं। सुनने में आ रहा है कि सैलरी का मुद्दा बाकी है तो बहुत जल्द उस पर भी समाधान हो जाएगा। चलिए, समस्या है तो समाधान है और समाधान है तो समस्या है, यानी कि ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी रहती है और हर समस्या का समाधान जरूरी है। समस्या का समाधान बात करेंगे तो बात बनेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। एटीट्यूड ऑल सो शार्दा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। वजह तुम हो, सिटी लाइट फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक, अरिजीत सिंह की आवाज, रश्मि सिंह। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: का बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरुशाता 90.8 एफएम पर बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें मेरे यानी गगन के साथ। फिलहाल लक लक बदैया इंडिया को, क्योंकि हमने कल कमाल धमाल कर दिया। मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट मैच की। 30 गेंदों में अभिषेक शर्मा जी ने, शर्मा जी के लड़के ने 30 गेंदों में शतक जमा दिया। उनकी वाहवाह हो रही है, चारों तरफ उन्हीं की धूम, उन्हीं की चर्चा। आय हाय, कल क्या खेले। 11 छक्के 9 चौके उन्होंने लगाए और 34 गेंदों पर सिर्फ 108 रन उन्होंने बना लिए और इस कदर 3-0 से सीरीज पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया। और इस मैच की जब बात हो रही है तो टोटल 7 विकेट पर 221 रन बनाए भारत ने और जवाब में अफगानिस्तान टीम 94 रन पर ही पूरी तरह से समेट दी गई। और इस तरीके से भारत 127 रनों से मैच जीतकर T20 इंटरनेशनल सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया। लख लख बधाइयां जी। और शर्मा जी को, यानी कि अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर आगे कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पक्की कर रहा होता है। और कल हम मैच देख रहे थे तो राशिद खान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी फील्डिंग की और कई कैचेस तो उन्होंने बाउंड्री पर पकड़े। चलिए कोशिश करते रहिए। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार हुआ नहीं करती, लहरों से डर का नौका कभी पार हुआ नहीं करती, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा।
1: म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक, दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा। सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुरुशाता 90.8 एफएम।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं टेढ़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: शुबोए बादशाह
1: नजर थी पहने हुई बेचैनी आंखों में शैतानी हो गई।
2: अरे बादशाह साहब ने शादी की फिर से मतलब पानी फिर गया।
3: आखिर ये व्यक्तिगत मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि जब कोई सेलिब्रिटी होता है या कोई बहुत बड़ा लोग होता है, बड़े व्यक्ति होते हैं, तो वो आम जन तक पहुंच ही जाते हैं और आम जन उनकी खबरों को मिर्च मसाले के साथ पढ़ते भी है, सुनना भी लोग चाहते हैं। हाँ चलिए खैर, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। मुझे लगता है कि जब दिक्कतें परेशानियां होती हैं तो आप आध्यात्म की ओर चले जाइए, मेडिटेशन करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। लेकिन इसके इतर या विपरीत अगर लोग अपनी सेहत को खराब कर लेते हैं तो दिक्कतें परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब आध्यात्म का जिक्र कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती इस बात में है कि एक त्योहार जाता है तो दूसरे त्योहार का हम स्वागत कर रहे होते हैं। जैसे कि कल की अगर मैं बात करूं तो दाऊ यानी कि बलराम जी का कल जन्मदिन था, जयंती थी, और दाऊ जी मंदिर में बड़े धूमधाम से कल इसको सेलिब्रेट किया गया। बड़ा ही खूबसूरत दोहा है, क्योंकि मैं मथुरा से आता हूं तो बड़ा ही खूबसूरत दोहा है, कहते हैं कि दाऊ दाऊ सब कहे मैया कहे ना कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए, दाऊ सुदाता नहीं जग में कोई एक, है ना, इस तरीके से दोहे कहे जाते हैं। और कल की अगर मैं बात करूं, कल है राधाष्टमी, राधाष्टमी यानी कि किशोरी जी की जयंती। बहुत बहुत दिली दुआएं आने वाले इस पर्व की, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, हम सब एक दूसरे के बारे में सोचें, नेचर के बारे में सोचें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। मुझे लगता है कि हर धर्म हर बातें यही कहती हैं, और इन बातों को अगर आपने जान लिया समझ लिया तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, लोग आपसे बेपरवाह मोहब्बत करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, और बस देसी भाषा में कहें निकल पड़ेगी, हाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी।
4: ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में।
2: अरे हिमेश जी आगे,
3: हाँ हिमेश रेशमिया, ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुरुशारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ इस गाने को एंजॉय करिए, सिर्फ सुरुशारदा 90.8 एफएम। प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल मेरे यानी गगन के साथ।

0: कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: subscription. Never put investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
1: शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
2: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं, कहां से शुरू करूं। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब हम अखबारों के पन्नों को पलटते हैं तो आए दिन कहीं ना कहीं घटना, दुर्घटना, दुष्कर्म की वारदातें होती हैं। आज सोशल मीडिया पर भी वही हम सारी चीजें देख रहे होते हैं। निर्भया एक घटना घटी, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में एक बस की घटना घटी, और आज एक खबर को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। इवन आपको भी सुनकर बुरा लगेगा। एक 16 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म, उसके बाद उसकी हत्या। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी मां, बहन, बेटी है ना, सब हैं। हम उनका रिस्पेक्ट चाहते हैं, उनका सम्मान चाहते हैं, लेकिन बदले में हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं? और फिर आप ये कैसे भूल जाते हैं कि अगर आप कोई जघन्य अपराध कर रहे हैं तो आप बच जाएंगे? ऐसा संभव नहीं होगा। निश्चित तौर पर हर कर्म की सजा मिलेगी, हर दुष्कर्म की आपको सजा मिलेगी जिन्होंने ये घटना घटी है। हमें सुधरना होगा, संभलना होगा, एक साफ सुथरा वातावरण बनाकर रखना होगा। नियम कायदे कानून जो हैं और भी सख्त करने होंगे, ताकि वो कहते हैं ना कि सात पुश्तें तक याद रखें, कानून के दायरे में रहकर उनको सजा मिले। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे और ऐसी घटना दुर्घटना आगे न घटे, है ना। वक्त मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं आपसे और भी बातें करूं, बस यही कहूंगा कि सब अपना ख्याल रखें। सुनो शारदा 90.8 FM का ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। सुनो शारदा का जो फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, वहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। और वक्त का इशारा, मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ, फिर होगी आपसे भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई में, और मैं हूं आपका दोस्त शशि कपूर। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
1: बिल्कुल, और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है।
0: बात तो सही कही है विपिन जी आपने, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
1: अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले शुरू हो जाता है?
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
1: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं, उससे भी पहले।
1: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, आखिर कब से?
0: देखिए, विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन की मजबूत शुरुआत मिलती है।
1: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की ओर ले जाती है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
1: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर इतना जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं, बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
1: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सभी के जाने पहचाने हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी अपनी टीकन भाभी जी। तो सेहतिया भैया और टीकन भाभी, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: भाई, आप दोनों को मेरा प्रणाम और सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम। भाई, सब्जेक्ट जो आपने चुना है, इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि, कहते हैं ना कि जच्चा बच्चा, यानी कि जब बच्चा दुनिया में आ रहा है वो भी स्वस्थ आए और जो उसकी माँ है वो भी स्वस्थ रहे, और इसके लिए जरूरी है पोषण। और कह सकते हैं कि ये जो विषय वाकई बहुत अच्छा है, और विपिन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार श्रोताओं, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपकी टीकन देवी और आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, हम हमेशा आपसे कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो माँ और बच्चे को लेकर है, यानी आप सभी जानते हैं कि माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
0: बिल्कुल सियातिया भैया, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच में माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण है?
2: बिल्कुल महत्वपूर्ण है भाई, और ये केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वो कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसी के शरीर में पहुंचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी ही बेहतर होगी। गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वास्थ्य और पोषण पर ही निर्भर करता है। दोस्तों,
1: यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: लेकिन सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की, आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है?
2: भाई कपूर साहब यानी कि मेरे दोस्त शशि कपूर साहब, ये समस्या बहुत गंभीर है, एनीमिया। इसके बारे में जिक्र होना बहुत जरूरी है, इसके बारे में सवाल करना भी अति आवश्यक है। ये बहुत गंभीर समस्या है दोस्तों। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें खून की कमी है। वे कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
1: इसलिए उन्हें क्या थकान रहती है?
2: बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम और भी बढ़ जाता है दोस्तों।
0: सेहतिया भैया, किस तरह का जोखिम?
2: देखिए, जोखिम की जो आप बात कर रहे हैं, समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और प्रसव के समय अगर ज्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
1: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोर महसूस करना ही होता है।
3: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से खतरनाक बन सकता है।
0: भाभी जी, आपके कहने का मतलब ये है कि इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
3: बिल्कुल, इसलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं, गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच, पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्मार्ट मिलकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, सेहत सही लाभ गई। हमारा एक ही उद्देश्य है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को हम अपने श्रोताओं तक लेकर आए।
1: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए, क्या तैयारी उससे पहले भी जरूरी है?
2: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है, उसे आयरन की कमी नहीं है, तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है।
3: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
2: आपने बिल्कुल सही कहा टीकन देवी।
0: सियतिया भैया और टीकन भाभी, हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था, क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध है?
2: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन और DHA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे की सीखने, समझने, याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं।
1: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। आखिर इसका क्या मतलब है?
3: 1000 दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे को 2 साल का होने तक विशेष रूप से ध्यान रखें, और इसे ही सबसे महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेजी से विकास होता है। अगर इस पूरे समय में सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है।
2: टीकन जी, अब श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
3: बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम भी कहा जाता है, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है और उसे ये कई संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी, कोई दूसरा भी भोजन देने की जरूरत नहीं होती।
0: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तब?
2: भाई सवाल तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा जहां परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थायी पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चे की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं।
1: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है। अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है।
3: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है पोषण यानी महंगा खाना, जबकि सच यह है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही, अंडा, सब खाद्य पदार्थ बहुत ही पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि संतुलित भोजन हो और समय पर दिया जाए।
0: सियतिया भैया, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
2: बिल्कुल, अक्सर हम बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
1: और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना रहे होते हैं।
3: बिल्कुल सही, परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों के हिसाब को अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि हम सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वह अपने बच्चे, परिवार, समाज, समुदाय की देखभाल कर पाएगी।
0: बिल्कुल, और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती हैं।
1: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों
0: श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों का अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
1: हमने यह भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
3: तो दोस्तों, हमारा विषय है महिला और बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, यानी अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। मैं सभी बहनों और परिवार से यही कहना चाहूंगी कि सेहत को कभी भी नजरअंदाज ना करें, समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
2: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों
0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा, मजबूत होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
1: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
2: क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
3: धन्यवाद, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी ये जानकारी जरूर दें कि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा स्वस्थ बनेगा और हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर पाएंगे जहाँ स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सियतिया भैया आपका और टीकन भाभी आपका भी, जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। और हम तो यही कहना चाहेंगे सभी श्रोताओं से कि स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले हम सब लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
4: सेहत सही तो लाभ कई।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
3: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
2: क्या है राज?
3: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
4: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: तुमसे प्यार नहीं करती। कृपया आप रास्ता देंगे?
1: प्लीज।
0: थैंक यू।
2: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
0: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चों कौन हूँ मैं।
2: मालिका शरारती है। वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा, इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
2: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरुआती दो साल है बच्चे की जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
1: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शुरुआती दो साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाएं हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं, जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
1: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शुरुआती दो साल है बच्चे की जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे सुने जाने समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान।
1: जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज का जो समय है वो इंटरनेट का जमाना है, इसलिए हमें दुनियादारी के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी हम समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे और अपनी खेती से अधिक मुनाफा ले पाएंगे। किसान मित्रों, भारत सरकार द्वारा भारत में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में अपने ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। किसान मित्रों, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। किसी भी देश के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती आज के वक्त में प्राथमिक वाला मुद्दा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही भारत विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। डिजिटल इंडिया का समाज के हर क्षेत्र के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस अभियान का पूर्ण रूप से व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसने पूरे समाज की प्रगति में योगदान दिया है। इस पहल के तहत सरकार ने डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने और डिजिटल सर्विसेज को पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इससे नागरिकों को आसानी से विभिन्न सरकारी सेवाओं और जानकारी का उपयोग करने का मौका मिलता है। ये भारत को एक डिजिटल युग में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और साथ ही देश के विकास को गति दे रहा है। किसान मित्रों, डिजिटल इंडिया का महत्व आज की तकनीकी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और हमारे देश के साथ ही हम सभी के लिए एक मजबूत भविष्य बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि जनधन योजना, आधार, डिजिटल रोजगार और डिजिटल एजुकेशन। इससे गांव और शहरों के लोग आसानी से सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जो समृद्धि और सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत में डिजिटल शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे तकनीकी ज्ञान और कौशलों का संवर्धन हो रहा है। इससे देश का विकास और सामाजिक न्याय में सुधार हो रहा है। डिजिटल इंडिया भारत को ग्लोबल तकनीकी नागरिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और देश के विकास को सुनिश्चित रूप से गति दे रहा है। इसका महत्व आज की तकनीकी दुनिया में और भी बढ़ रहा है और हमारे देश के लिए एक सशक्त भविष्य बनाने में मदद कर रहा है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही डिजिटल इंडिया की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। किसान मित्रों, कुछ साल पहले तक आप पुराने पारंपरिक तरीकों से खेती करते रहते थे। आपके पास इतने साधन और सुविधाएं नहीं थी कि आप खेती में नए प्रयोग कर पाएं या खेती में होने वाली समस्याओं से निपट पाएं। लेकिन पिछले कुछ समय में आप जिस तरह से डिजिटली सक्षम हुए हैं, उससे कृषि क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। हाल ही में एक नया टर्म डिजिटल एग्रीकल्चर चलन में आया है। डिजिटल एग्रीकल्चर यानी फसलों की पैदावार बढ़ाने और खेती को सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों और सेवाओं का इस्तेमाल करना। हमारे किसान भाई अब खेती से जुड़ी अपनी समस्याओं से निपटने, नई कृषि विधियां सीखने और दुनिया भर में हो रहे कृषि प्रयोगों के बारे में जानने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे साधनों से जुड़ रहे हैं। खेती को बेहतर बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ये प्लेटफॉर्म काफी काम आ रहे हैं। भारत में आज भी ज्यादातर खेती मौसम के हाल पर टिकी है, जिसमें ज्यादा जोखिम है। लेकिन किसान भाई, घर बैठे कृषि वैज्ञानिकों के बताए तरीकों से इन समस्याओं से निपट रहे हैं। पहले खेत में किसी फसल पर कोई रोग लग जाए तो बिना कृषि विशेषज्ञ को दिखाए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी, और जब तक कृषि सलाहकार खेतों का मुआयना करने पहुंचते थे, तब तक उस फसल का समय ही बीत चुका होता था, और कई बार तो छोटी सी बीमारी भी जानकारी के अभाव में पूरी फसल के बर्बाद होने का कारण बन जाती थी। लेकिन अब किसान भाइयों की कोई भी समस्या हो, चुटकियों में हल हो जाती है। सोशल मीडिया ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। किसानों को खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो, वे व्हाट्सएप या फेसबुक पर बने ग्रुप में समस्या को बताकर उसका निदान पूछते हैं और फटाफट उसके जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। इन समूह में कृषि वैज्ञानिक, कृषि सलाहकार, ये सब जुड़े रहते हैं। हमारे किसान भाई ज्यादातर जैविक खेती, फसल में लगने वाले रोग, जानवरों से फसलों को बचाने के तरीके, खेती में उत्पादन कैसे बढ़ाएं, प्रोसेसिंग, सरकार की किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और अनुदान जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, आप सोशल मीडिया का जरूर आप लाभ उठाएं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सावधानी भी बरतनी चाहिए। कई बार हम ठगी का शिकार भी हो जाते हैं, तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सतर्क होकर इस्तेमाल करें ताकि आप किसी भी ठगी का शिकार ना हो पाए। तो किसान मित्रों, इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

अभी आप सुन रहे थे लोकेंद्र सिंह से ये रागनी। किसान मित्रों, भारत सरकार आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए गोबर धन योजना चला रही है। इस योजना के तहत गांव में संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और इस संयंत्र की स्थापना से गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा और इससे किसानों, खासकर हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गोबरधन योजना के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं, पहला गांव को स्वच्छ बनाना और दूसरा पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय और ऊर्जा उत्पन्न करना। इसका लक्ष्य उद्यमियों को जैविक खाद, बायोगैस और बायो सीएनजी उत्पादन के लिए गांव के क्लस्टर्स बनाकर इनमें पशुओं का गोबर और ठोस अपशिष्टों के एकत्रीकरण और संग्रहण को बढ़ावा देना है। किसान मित्रों, गोबरधन योजना को स्वच्छ भारत मिशन के तहत आरंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने के साथ ही शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में स्वच्छता का प्रसार करना है। इन उद्देश्यों को गोबरधन योजना के साथ एकीकृत कर इस दिशा में प्रगति की जा सकती है। और किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हमारे किसान भाइयों की आय पूरी तरह फसल की पैदावार पर निर्भर करती है, इसीलिए ये योजना किसानों की आय बढ़ाने में काफी हद तक कारगर होगी। सरकार ने इस योजना द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ उनको आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना गोबरधन योजना के बारे में, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये रागनी।

किसान मित्रों, इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

कुदरत के वसूल को, कुदरत के वसूल को मिटा सकता है कौन, और मौत के पैगाम को हटा सकता है कौन। दोस्तों, सत्यवान ने समझाया, सावित्री तू सही बता दे, ये चेहरे पर जरदाई के लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं, आज तू उदास क्यों है। जति पुरुष के साथ सती वीर तो खुश होकर रहती है, लेकिन बहुत दिन के बाद आज ये खुशहाली कहां उजड़ गई। सावित्री ने समझाया, प्राणनाथ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ हो उसे बताओ, क्या जंगल में रहने के बाद इस टोटी की लाचारी ने तुम्हें सता तो ना दिया। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं स्वामी। दोस्तों, सत्यवान के दिमाग में वो बात नहीं आई, और ना ही सत्यवान को ऐसा पता था कि तू एक दो दिन में सतीवीर को छोड़ के चला जाएगा। दोस्तों, जैसे ही सत्यवान डोरी और कुल्हाड़ा लेकर के जंगल की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, हाथ पकड़ लेती है सावित्री, महाराज आज तो मैं भी तुम्हारी गैल चलूंगी। लेकिन सावित्री, वीर तो घर में ही शोभा देती है, जंगल में काम करना तो ये पुरुष का धर्म है, लेकिन महाराज हमारा ये पेशा है, मैं आज तुम्हारे साथ लकड़ी काटूंगी। भला कैसे कहती है और कैसे समझाता है।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Ole, ole, ole. Oh, Shonak. हेलो कौन
2: नमस्कार हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं
2: जल्द मिलते हैं
1: हेलो हेलो हेलो
4: आ रहे हैं दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते तो दस्त के लिए तैयार रहना घर में ORS और जिंक है ना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
6: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
1: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
0: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं।
1: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निःशुल्क पहुंचाएगी।
0: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
0: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: वारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत बहुत सारी बातें हो रही हैं। सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से वो अच्छी अच्छी बातें, जागरूकता वाली बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं का ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। जाने अनजाने में अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो इन बातों को हमें समझना होगा कि ये एक अत्याचार का मामला है जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी बातें आती हैं महिलाओं के लिए, चाहे वो कानून के हक की बात हो, उनके सम्मान की बात हो, और उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात हो। और कहा जाता है कि महिला लक्ष्मी का रूप होती है, काली का रूप होती है, और हमारे हिंदुस्तान में प्रत्येक महिला का सम्मान किया जाता है और सम्मान करना भी चाहिए। कहा यह भी जाता है कि जिस घर में महिला का सम्मान होता है उस घर में सुख शांति का वास होता है, और जहां इसके विपरीत अगर कुछ ऐसा हो रहा होता है तो सच ये भी है कि उस घर में तरक्की, बरकत या शांति कभी हो नहीं सकती। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर आवाज उठाने में आशा की क्या भूमिका है, यानी कि आशा वर्कर की, और इसी संबंध में बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने बात की, जैसे कि हिंसा के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करना, इसके अंतर्गत बात की मुद्दे के बारे में सचेत रहें, बात की सवाल पूछें, तीसरा बिंदु था स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाना, चौथा बिंदु था भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, पांचवा बिंदु है जिसकी अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, महिला की सुरक्षा के उपाय करें। अब बात सामने आती है कि महिला को बताएं कि कैसे उन्हें हिंसा होने की संभावना के प्रति सचेत रहना चाहिए और स्वयं अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। यदि महिला उत्पीड़क व्यक्ति को छोड़ देने का फैसला करती है तो समुदाय या VHSNC की मदद से आप कोई सुरक्षित जगह खोजने में उनकी मदद कर सकती है। ये बात कर रहे हैं हम आशा वर्कर के लिए, जैसे कि उनका मायका, किसी सहेली या संबंधी का घर जहां वो मामला सुलझ जाने तक अस्थायी तौर पर रह सके। कुछ जिलों में सरकार अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रही महिलाओं की मदद के लिए सहायता केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। आप महिला के परिवार या सहेलियों से सहयोग न मिल पाने की स्थिति में इन केंद्रों में आश्रय खोजने में सहायता कर सकती है। बात सामने आती है कि जब महिला घर छोड़े तो ये सुनिश्चित करें कि वो अपने साथ अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, उनका और उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा सबूत, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज, संपत्तियां अथवा उनके अपने गहने आदि साथ लेकर जाए। हिंसा करने वाले व्यक्ति का सामना करना आवश्यक होता है ताकि बार बार होने वाली हिंसा को रोका जा सके, और यही सारी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि हम जानें कि महिलाओं के हक क्या हैं, उनकी किस तरीके से हम आवाज बुलंद कर सकते हैं अपनी आवाज में साथ देकर। कानून के तहत महिलाओं के लिए उपलब्ध प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आशा वर्कर की। सो ये काम ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा अपने समुदाय के अन्य सदस्यों की मदद से भी कर सकती हैं, जिसमें VHSNC साथ ही महिला समूह और ग्राम पंचायत भी इसमें शामिल होते हैं। अगला बिंदु है महिला को कानूनी उपायों के बारे में जानकारी देना। ये सच बात है कि कहीं कहीं या यूं कहें कि अधिकतर मामलों में महिलाओं को अपने कानून के हक के बारे में, उनको उनके अधिकार के बारे में मालूमात नहीं होती। यह भूमिका होती है एक आशा वर्कर की। आपको महिला को ऐसे स्थानों अथवा व्यक्तियों के बारे में जानकारियां देनी चाहिए जहां वो चाहे तो हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है और हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकती है। देश के अधिकांश जिलों में महिला थाने
वो महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ICDS के पर्यवेक्षक, बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी CDPO से भी संपर्क कर सकती हैं। ये व्यक्ति उनकी शिकायत को महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंध संरक्षण अधिकारी के पास भेज देंगे और ये अधिकारी सरकार द्वारा महिला हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होता है। साथ ही इस अधिकारी से संपर्क करने के लिए एक टोल फ्री नंबर होता है, यानी जहां मुफ्त में फोन किया जा सकता है। आप उसे कानूनी सहायता केंद्रों और वहां से ली जा सकने वाली कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दे सकती हैं, जो जिला स्तर पर अदालत में मौजूद होते हैं। आखिरी बिंदु है सहायता के लिए अन्य संसाधनों तक पहुंचना। तो सोचिए, कल्पना करिए कि हमारे देश में कितनी जागरूकता का अभाव है और यही सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जागरूक रहिए, निडर रहिए और अपने हक के बारे में बात करिए। अगर आपके साथ यानी महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज बुलंद करिए। बात करते हैं हिंसा के खिलाफ कार्रवाई में सहायता के लिए आपके पास पुलिस, सहयोगी संगठनों और मीडिया अधिकारियों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संवाददाता, पत्रकार, रेडियो और टीवी पत्रकार के टेलीफोन नंबर होने चाहिए। मीडिया हिंसा के खिलाफ कार्रवाई हेतु सामाजिक दबाव बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो ये कुछ खास बातें हमने आप तक पहुंचाई। अगले भाग में ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे बलात्कार के मामले में क्या करें। इसकी गहराई को हमें समझना होगा और इसका समाधान हमें ढूंढना होगा। इसके विषय में कुछ खास बातें बात करेंगे जरूर, कहीं जाएगा मत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मेरे यानी गगन के साथ।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास और ऐसे समय में एक आशा वर्कर की क्या खास भूमिका होती है, हमारी क्या खास भूमिका होती है, महिलाओं की क्या खास भूमिका होती है, वो सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब विषय आता है कि बलात्कार के मामले में क्या करें, किन बातों को ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं, यदि कोई महिला बलात्कार की शिकार हुई है तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यौन हमले के तुरंत बाद पीड़ित महिला को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जगह पीड़िता का घर, उसकी दोस्त अथवा पारिवारिक सदस्य का घर हो सकता है। अगला बिंदु है सहयोगपूर्ण रवैया अपनाएं और उसे विश्वास दिलाएं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके साथ विनम्रतापूर्ण और समझदारी के साथ व्यवहार करें। अगला बिंदु है पीड़ित महिला से ये पता करें कि क्या वो बलात्कार करने वाले की पहचान कर सकती है और बलात्कार की परिस्थितियों साथ ही अपनी चोटों के बारे में बता सकती है। अगला बिंदु है महिला को तुरंत डॉक्टरी सहायता मिलना जरूरी है और तत्काल चिकित्सीय फोरेंसिक यानी बलात्कार के मामलों में की जाने वाली जांच कराए जाने पर खास जोर दिया जाना चाहिए। आपको भी महिला के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर जाना चाहिए। अगला बिंदु है सबूतों को सुरक्षित रखना अथवा पीड़ित के शरीर में रह गई जैविकीय सामग्री महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हीं से यौन हमला करने वाले उत्पीड़क की पहचान होती है, खास तौर से उन मामलों में जिनमें उत्पीड़क कोई अजनबी हो। इसलिए महिला को जांच से पहले नहाना या अपनी साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। अगला बिंदु आता है महिला और उसके परिवार वालों को पुलिस की सहायता लेने में मदद करें और उन्हें समुदाय में काम करने वाले ऐसे अन्य संगठनों से मिलवाएं जो बलात्कार की शिकार हुई महिला को सहायता मुहैया कराने का काम करते हैं। अगला बिंदु आता है महिला द्वारा अपराध की रिपोर्ट अभी दर्ज न कराने का फैसला करने पर भी फॉरेंसिक यानी कानूनी कार्रवाई में मदद के लिए की जाने वाली जांच, चिकित्सा जांच कराना और रिपोर्ट और सबूतों को सुरक्षित रखना जरूरी है ताकि पुलिस बाद में उन्हें मामले की कार्रवाई और जांच के लिए प्रयोग कर सके। अगला बिंदु आता है गर्भ ठहरने से बचाने के लिए महिला को आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां दें। अगर गंभीर चोटें लगी हो तो तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। अगला बिंदु है महिला की मदद करें जिससे अगर उसने अभी तक इस घटना के बारे में अपने परिवार वालों को न बताया हो तो वो उन्हें बता सके। याद रखें कि पारिवारिक सदस्यों को भी बलात्कार की घटना के बारे में अपनी भावनाओं से उबरना होता है। अगला बिंदु है महिला और उसके परिवार वालों का हौसला बढ़ाएं और बताएं कि बेशक ये एक दिल दहलाने वाली घटना है किंतु इससे बाहर निकलकर आगे बढ़ना ही होगा और इस घटना से जीवन रुकता नहीं और हर चीज का अंत नहीं हो जाता। आखिर में बात करते हैं महिला को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है और इस बारे में उसे जिला अस्पताल में ले जाने के लिए सहयोग दिया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसी खास बातें थी तो जिन बातों को हमें ध्यान में रखना अति आवश्यक है। मैं तो यही कहूंगा कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिला दुर्गा भी है, महिला लक्ष्मी भी है और महिला ही एक घर को चलाती है। और जिस प्रकार हम अपनी माताओं बहनों के लिए सम्मान चाहते हैं तो उसी प्रकार हमें दूसरों की माताओं बहनों का सम्मान करना चाहिए। ये विशेष कार्यक्रम सुनो शारदा 90.8 FM पर हम आपके लिए लेकर आए। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद कुछ खास बातें करेंगे। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मेरे यानी गगन के साथ।

एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। एक गंभीर विषय जिस पर हर कोई बात करना चाहता है या कोई नहीं चाहता, लेकिन हम चाहते हैं कि इस विषय पर हम बात करें ताकि जन जन को ये बातें मालूम हो, महिलाओं को अपने हक की बातें मालूम हो, उनके साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है ये उनको मालूम हो। हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक

अपनी समस्या को बयान कर पाने से इस बारे में आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है और इससे अपने अनुभवों के आधार पर अन्य महिलाओं यानी कि दूसरी महिलाओं को बेहतर ढंग से सहायता करने में आपको मदद मिलेगी। खास बात ध्यान रखने वाली यह है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा सत्ता का ही एक रूप है। जो व्यक्ति सत्ता या ताकतवर स्थिति में होते हैं वो अक्सर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस बात की संभावना होती है कि समस्या के खिलाफ लोगों को एकजुट करने और हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता में आपकी भागीदारी से आप समुदाय के ताकतवर व्यक्तियों द्वारा स्वयं उत्पीड़न का शिकार हो जाएं या ऐसे किसी खतरे से घिर जाएं। आपको इस बारे में सदैव सचेत रहना चाहिए और सक्रिय रूप से अपने गांव के बुजुर्गों साथ ही VHSNC की मदद लेनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना होगा कि समुदाय में लोग जानते हों कि आपके सम्मानित लोगों, पुलिस और स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं के साथ संपर्क और जुड़ाव है। इस बात का लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही सुरक्षा उपायों को भी अपनाएं, जैसे अकेले चलने से बचना, एकांत सुनसान इलाकों से दूर रहना, अंधेरा होने के बाद समूह में चलना इत्यादि। तो ये खास बातें हैं जो एक महिला को ध्यान में रखना चाहिए और ये बात बता रहा हूं सामूहिक हिंसा के खिलाफ प्रयास और इसके अंतर्गत एक आशा वर्कर की क्या भूमिका है। अगला बिंदु आता है परिचर्चा के लिए स्थितियां। हर स्थिति को पढ़ने समझने के बाद आप ये पहचानें कि आप उस स्थिति में क्या कदम उठा सकती हैं। इनमें से कुछ में तत्काल कार्रवाई की जरूरत हो सकती है और कुछ में लगातार जाने और परामर्श देने की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ में अन्य समूह जैसे कि ग्राम सभा, VHSNC और महिला समूह इत्यादि के साथ मिलकर काम करने की भी जरूरत पड़ सकती है। ये भी जानना समझना होगा कि इनमें से किन स्थितियों में ग्राम स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है और किसमें शिक्षा व जागरूकता उत्पन्न करने की और किसमें अन्य उच्च स्तरों पर मामले को ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो जो मैं बात कर रहा था उसी से संबंधित हिंसा की परिस्थितियां अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला बिंदु है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के मुंह पर मुक्का मारता है क्योंकि उसे बीबी द्वारा बनाया गया भोजन पसंद नहीं आया। दूसरी बात, एक महिला के साथ उसकी सास और पति द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार और अपमान किया जाता है क्योंकि वो पर्याप्त दहेज नहीं लेकर आई। पति पत्नी को पीटने की धमकी देता है और वो उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहती। अगला बिंदु है पैसे की कमी के कारण एक औरत अपना इलाज ठीक से नहीं करा पाती। पति अपनी पत्नी को बाहर जाने नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे पुरुष उसको देखते हैं। एक औरत का 4 बार गर्भपात हुआ है क्योंकि उसका परिवार बेटा चाहता है। 3 लड़कियों और 1 लड़के वाले एक गरीब परिवार में पुरुषों को पहले खिलाया जाता है और अक्सर लड़कियों को बाद में बचा खुचा खाने को मिलता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार बेटे को उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज पढ़ने भेजता है जबकि उनकी बेटी की पढ़ाई प्राथमिक स्कूल के बाद ही रोक दी जाती है। अगला बिंदु आता है कि एक 15 साल की लड़की को स्कूल छोड़ देना पड़ा क्योंकि लड़कों का एक समूह उसके साथ रोजाना छेड़छाड़ करता था। अगला बिंदु है एक महिला को बस स्टॉप पर या किसी सार्वजनिक वाहन में यात्रा करते समय पुरुषों का एक समूह परेशान करता है। एक साथ में रहने वाले अविवाहित जोड़े में पुरुष महिला को परेशान करता है। और आखिर में बिंदु है एक भाई अपनी बहन को मार डालता है क्योंकि वो किसी ऐसे लड़के से प्रेम करती है जिसे उनके परिवार वाले और समुदाय ठीक नहीं समझते। चलिए वक्त हो चुका है यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का, म्यूजिकल ब्रेक का, और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा यहीं एक अच्छी खास जानकारी के माध्यम से जिसे मैं भी समझ रहा हूँ इस कार्यक्रम के जरिए और आप तक वो बातें पहुंचा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी इन बातों पर गौर फरमाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये मुझसे मेरी मिलती जुलती कहानी है तो प्लीज आप अपनी आवाज जरूर आगे तक लेकर जाएं। सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
3: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
2: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
3: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
2: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियाँ खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: सुनो

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे 1 साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में।
1: आज हम लोग कक्षा 6 के पाठ बचपन पर बातचीत करेंगे। साथियों, इसके सहारे शायद हम अपने बचपन पर भी बात करें। आपने बहुत से लोगों के बचपन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में, गांधी जी के बचपन के बारे में, विवेकानंद जी के बचपन के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बचपन के बारे में बहुत सी बचपन की कहानियां पढ़ी होंगी। और देखिए कि कृष्णा सोबती, जिसके बचपन के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक बड़ी लेखिका है कृष्णा सोबती। तो आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्या आज जिस बचपन के बारे में वो बात कर रही हैं, उनसे इसमें क्या फर्क है, थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। साथियों, आज मेरे साथ तनिषा बैठी हुई है। तो तनिषा से मैं जानना चाहूंगी कि तनिषा, तुम बताओ कि 2-3 साल पहले तुम, अगर खान पान तुम्हारा क्या बदला है, क्या आज और पहले में क्या पहनावा ओढ़ावा बदला है, क्या तुम्हारी पसंद बदली है, इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ी सी बताओ तनिषा।
2: मेरे बचपन

0: पहले मैं फ्रॉक पहनती थी, अब मैं जीन्स टॉप पहनने लग गई। पहले पहले बहुत कुछ खेला करती थी, अब खेलने से रोका जाता है, कुछ पढ़ने के लिए बोला जाता है। अब खान पान में भी बदलाव आया, जैसे पहले चाउमीन बर्गर इतना नहीं मिलता था, पर इतना अब मिलना लग गया है। तो ये सब बदलाव आए हैं मेरे बचपन में।
1: अच्छा, तुम्हें अच्छा लगता है ये बदलाव?
0: हाँ जी,
1: अच्छा लगता है।
0: हाँ जी।
1: चलो आज अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी कृष्णा सोबती के बचपन के बारे में। साथियों, कृष्णा सोबती का एक कार्यक्रम है जो आप सभी सुन लीजिएगा। थोड़ा सा कृष्णा सोबती से हमारे बच्चों ने कुछ बातें की हैं, उनकी पसंद के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके लेखन के बारे में, वो सुन लीजिए और फिर हम आपसे चर्चा करते हैं। उसके बाद आप ये ज्यादा जान पाएंगे कि कृष्णा सोबती जो यहाँ बचपन के बारे में कह रही हैं, उससे कहाँ तक आज भी उनकी स्मृतियों में वह समाया हुआ है, कहाँ तक वह दिखाई पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि किस पूरे पाठ में किन किन बातों पर लेखिका ने जोर दिया है। आपको ध्यान होगा, आप पाठ तो पढ़ के आए होंगे और जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ते हुए आप ध्यान करिए कि पहले शुरुआत कहाँ से की है। शुरुआत में ही वो कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, ये यहाँ जितने रिश्तों की बातें इन्होंने की हैं, ये सारे रिश्ते किसी एक व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है कि लेखिका का व्यक्तित्व काफी दिलचस्प है ना तनिषा?
0: हाँ जी।
1: जरूर उनमें कुछ खास बात है, तभी तो उनमें जीजी भी दिखाई पड़ती हैं, उनमें बुआ भी दिखाई पड़ती हैं, उनमें दादी भी, उनमें नानी भी, कुछ भी हो सकती है, मौसी भी, और दोस्तों के साथ दोस्त, आपकी दोस्त भी हो सकती हैं। तो एक ऐसे व्यक्तित्व का तुरंत पहली ही पंक्ति में उन्होंने परिचय दे दिया है कि जो सबके साथ घुल मिल करके उसके जैसा हो जाने वाला होता है। शुरुआत उन्होंने यहाँ से की है। उसके बाद उन्होंने शुरुआत करते हुए तुरंत वो आ गई हैं कि आज जो मैं कपड़े पहन रही हूँ, आज जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, लगता है जैसे थोड़ी बूढ़ी हो रही है, थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई है, एहसास होता है ना थोड़ा सा। फिर अचानक याद आता है कि ऐसा भी नहीं है। उन्हें स्मृतियों में याद आता है कि एक समय था जब वो फ्रॉक पहना करती थी, जब वो लहंगे पहना करती थी, जब वो घाघरा पहना करती थी, स्कर्ट पहना करती थी। और उनको जैसे ही हम बचपन के बारे में याद करते हैं ना, हम थोड़े और नए हो जाते हैं, थोड़े और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे ही हम बचपन के बारे में सोचते हैं, वैसे ही थोड़ा और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, अच्छा लगता है ना, थोड़ा कूदना, खेलना, मस्ती। तुमने कहा ना कि अब हमें खेलने को नहीं मिलता है, मना किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता से भी मैं आग्रह करूंगी, कैसा नहीं करना चाहिए, खेलने दीजिए बच्चों को बाकायदा। और ये बचपन फिर लौट के नहीं आता है। बचपन तो एक बार गया तो गया, सिर्फ स्मृतियों में रह जाएगा। तो सबसे पहले पैराग्राफ में, अनुच्छेद में, जिसको हम लोग कहें कि लेखिका ने अपने पहनावे ओढ़ावे का जिक्र किया है। अब इस पहनावे ओढ़ावे को पढ़ करके, सुन करके आपको लगता होगा कि ऐसा लगता है कि आज तो ये सारे ड्रेस ओकेजनली पहनते हैं हम लोग, किसी किसी खास उत्सव पर पहनते हैं, किसी की शादी में। अब वो समय चला गया जब सहज ढंग से इसको हम पहनते रहे हों। तो यानी पहनावे ओढ़ावे में जो इतना बदलाव आया है, उसकी तरफ ध्यान दिलाती है लेखिका। तो ऐसा पहनावे ओढ़ावे में जो बदलाव आया है, उसकी ओर हमारा ध्यान ले जाती है। और सच पूछिए तो बच्चों, आप लोगों को तो एक परियोजना भी ऐसा करना ही चाहिए कि आखिर किन दशकों में कौन से कपड़े ज्यादा मशहूर रहे हैं, और बच्चे का क्या कपड़े पहनते रहे हैं, किस राज्य के बच्चे क्या कपड़े पहनते रहे हैं, किस देश के बच्चे भी आगे जाया जा सकता है, पहले राज्य तक करिए बात। तो आप पहनावे ओढ़ावे पर एक बाकायदा एक परियोजना कार्य कर सकते हैं, और अपने इस परियोजना कार्य में, अपनी फाइल में, जो आप फाइल बनाए, उस फाइल में बाकायदा अपने से कटिंग करके कुछ कपड़ों को वहां लगा भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। तो आपको कपड़ों की जानकारी हो पाएगी। और एक और बात कहूंगी तनिषा, जब कपड़ों के बारे में करना ना, कपड़ों लगाना अपनी फाइल में, तो ये भी ध्यान रखना कि जो कपड़े होते हैं ऊनी कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, बहुत सारे कपड़े, तरह तरह के कपड़े होते हैं ना, तो वो कौन से कपड़े किस मौसम में पहना जाता है, आप बाकायदा ज्योग्राफी की जानकारी भी कर लेंगी किस राज्य का है, और मौसम के साथ साथ आप बाकायदा साइंस को भी जान पाएंगी, काफी कुछ जान पाएंगी। तो कौन से मौसम में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, यह भी आप जान पाएंगी। तो वह भी उसमें चिपका करके, छू करके जानिए कि कैसा उसका स्पर्श होगा, तो वह कपड़ा किस राज्य में और किस समय में पहना जाता होगा, कहाँ बनता है। हथकरघे की भी दौरा कर सकते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन कुछ समय बाद आप चाहें तो देख सकते हैं, और ना सही तो आप वेबसाइट पर जा करके देखिए, थोड़ा सा इंटरनेट पर जा करके देखिए, हथकरघों के बारे में जानिए कि हथकरघा के बाद अब क्या पावरलूम आ चुका है, अब बदल गया है ना, टेरेलिन के कपड़े जो तुम पहनते हो वो बदल गया है, पहले हाथ से बनते थे कपड़े। तो कपड़ों के बारे में पूरी एक जर्नी, पूरी एक यात्रा बाकायदा आप लिख सकते हो, एक परियोजना कार्य में कर सकते हो अपने। फिर दूसरे अंश में आप आए तो लेखिका सिर्फ कपड़ों तक नहीं सीमित रहती हैं, कपड़ों की देखरेख कैसे करती थी बचपन में ये लोग, जूते पहनते थे तो जूतों की देखरेख कैसे करते थे, इसका भी जिक्र आता है। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि तुम लोग भी शायद अपने कपड़ों की देखरेख खुद करते होगे, या तुम्हारी माँ करती है, कौन करता है?
0: मम्मी कभी हम।
1: अच्छा, तो लेकिन अपने से करना चाहिए अपने कपड़ों की देखरेख। लेखिका ने खास तौर से जोर दिया है कि अपने मोजे धोना, अपने जूते पॉलिश करना, ये हमारा खुद का काम होता था, कोई और में हमारी सहायता इसमें नहीं करता था। तो ये बात जोर देकर लेखिका यहाँ पर कह रही है, हम बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए तो कह रही हैं, तो आप बाकायदा, ये लोग खुद काम करते थे, हाथ से काम करते थे, कोई इनका सहायक नहीं इसमें साथ देता था, ना तो मम्मी पापा, वो खुद से काम करते थे, खुद से उसको किसी देखरेख करते थे, और कैसे देखरेख करते थे इसका भी जिक्र आया। और जैसे ही जूते उनके हाथ में आए लेखिका के, उनको तुरंत ध्यान आया कि ये जूते जब हम लोग पहनते हैं तो कभी कभी तो ये काटते हैं, कभी कभी तो एक आवाज सी होती है, चुरचुर की आवाज होती है। फिर वो कहती है कि पिछले जमाने में जब हम लोग जूते पहनकर चलते थे तो क्या करते थे, हाथों में रुई लेकर चले जाते थे ताकि जब कभी काटे जूते तो हम उसमें लगा लें। आप भी ऐसा करती हैं?
0: नहीं,
1: एकदम से एक एक करके जब उनको ध्यान आता है कपड़ों का और आज और पुराने में क्या अंतर था, वो तुरंत करती चली जाती है। फिर से उनको याद आता है कि एक हमारे जमाने में मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे, ग्रामोफोन। देखा आपने ग्रामोफोन?
0: अब इस जमाने में नहीं है वो।
1: अरे है, अभी भी आपको म्यूजियम में भी दिखाई पड़ेंगे, कुछ शौकीन लोग अपने घरों में भी रखते हैं, आज भी रखते हैं, और बहुत ही शौकीन लोग हैं वो लोग ग्रामोफोन रख रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से शोपीस की तरह हमारे पास रहता है, ज्यादा उसका प्रयोग नहीं होता है, कम लोग उसका प्रयोग करते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो ग्रामोफोन हुआ करता था, आज क्या हो गया है उसकी जगह पर?
0: आजकल फोन होने लग गए, टीवी होने लग गए,
1: रेडियो हो गए,
0: लैपटॉप हो गए, टैब हो गए,
1: सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हो चुका है। तो बहुत से मनोरंजन के साधन आज हो चुके हैं, इन मनोरंजन के साधनों के साथ और पहले के मनोरंजन की तुलना किया जाए साधनों के, तो बहुत कम हुआ करता था। वो थोड़े से संगीत हम लोग सुन लिया करते थे ग्रामोफोन पर, ऐसा लेखिका कहती है। तो एकदम से क्या अंतर आया है मनोरंजन की दुनिया में, उस पर भी हमारा ध्यान दिलाती चली जाती है। आप चाहो तो इस यात्रा को भी बाकायदा लिख सकते हो, यानी मनोरंजन की यात्रा, यानी संगीत की दुनिया की यात्रा। तो आप जानने की कोशिश करो कि पहले कैसा होता था और आज कैसा होता था, उसमें तकनीकी परिवर्तन कैसा आया है, और उसमें अगर देखा जाए तो लेखन में कैसा, गीतों के लेखन में कैसा परिवर्तन आया है, संगीत में कैसा परिवर्तन आया है। चाहो तो आप लोगों से बातचीत भी कर सकते हो, संगीत की दुनिया में रहने वाले लोगों से आप लोग बात भी करो और इसको करो, इससे आपको बहुत से क्षेत्रों की जानकारी होगी, केवल हिंदी, केवल भाषा के बारे में नहीं, बल्कि भाषा के जरिए आप संगीत की ओर जा सकते हैं, आप बाकायदा बहुत सी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। तो ये भी वो आगे करती चली जाती। फिर वो आ जाती है खान पान पर, खान पान में उन्होंने बहुत सारे जिक्र किए हैं, आपको याद होगा, मुँह में पानी आ रहा है ना। कुल्फी की बात करती हैं, वो कहती हैं कि पहले कुल्फी हुआ करता था, आज आइसक्रीम हो गया है, लेकिन आपको याद होगा कि आज भी कुल्फी चलती है, बहुत फर्क नहीं आया है। कम से कम खान पान में कुछ चीजें आज हमारे यहाँ एक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा कि पुरानी चीजें भी बाकायदा शौक से वो लोग उसको खाते हैं और उसको बनाते हैं। जैसे कुल्फी का जिक्र किया है इन्होंने कि कुल्फी हुआ करती थी और आज हमारे यहाँ आइसक्रीम होता है, लेकिन शरबतों में बदलाव आ गया है। आज तुम क्या पीते हो गर्मियों में?
0: कोक पीते, पेप्सी पीते, पर पिछले जमाने में कोक की जगह शरबत होया करते थे खसखस का।
1: तुम्हें कैसे पता कि शरबत होया करते थे? अब भी पीते हो?
0: नहीं अब तो नहीं पीते।
1: हाँ, तो ये लेखिका ने भी वर्णन किया है कि फालसे के शरबत हुआ करते थे, बहुत सारे शरबत, तरह तरह के शरबत हुआ करते थे और उन शरबत को पीते थे पहले। बाकायदा कोक और पेप्सी पहले नहीं हुआ करता था, इस तरह की चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। तो एक अंतर जो आया है और कैसे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है, इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हम सिर्फ वो पीते हैं और यह पीते हैं शरबत, तो दोनों में स्वास्थ्य में क्या अंतर आता है, उसका भी जिक्र करती चली जाती हैं। फिर एकदम से लेखिका आती है और कहती है शिमला में रहती थी, उनका पूरा बचपन शिमला में बिता, तो शिमला की पहाड़ियों का जिक्र करती हैं, साथ ही उन रास्तों का जिक्र करती हैं कि कैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों और कैसे ऊंचा नीचा रास्ता हुआ करता था। लेकिन जैसे ही रास्तों का जिक्र करती है ना तनिषा, उनको एकदम से उनको ध्यान आता है कि उन रास्तों में बहुत से ऐसे पेड़ हुआ करते थे जिन पे तरह तरह के फल लगा करते थे, जिनके अब नाम भी हम लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं। जैसे उन्होंने कसमल फल का जिक्र किया है। कसमल जानती है आप कसमल क्या होता है? एक तरह की रसभरी के नाम से आप जानते हो ना, रास्ते में आप लोग रसभरी खाते हो, तो रसभरी एक तरह का। तो नए नए शब्दावली भी आ रही है इनके यहाँ कि किसी खास क्षेत्र में किसी के लिए रसभरी के लिए क्या शब्द चलता है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। अगर दक्षिण भारत की लड़की कोई आपकी फ्रेंड है, मित्र है, तो आप उससे जानने की कोशिश करो कि इसके लिए उनके यहाँ क्या शब्द है, क्या ये फल उनके यहाँ मिलता है, क्या अगर मिलता है तो क्या नाम है। तो ये सारे नाम अगर इकट्ठे करोगे ना, तो आप बहुत सी भाषाएं जान पाओगे, बहुत सी भाषाएं की भाषाओं के शब्द जान पाओगे, उनका खान पान जान पाओगे, उनका रहन सहन जान पाओगे। तो वह भी कोशिश करना, ये बहुत जरूरी है। इससे तुम्हारी मित्रता भी अच्छी हो जाएगी निश्चित रूप से, है ना, तुम्हारे दोस्त के साथ मित्रता भी अच्छी होगी और उनके साथ खान पान के भी शेयर कर पाओगे। और साथ ही इनमें एक और शब्द आया है काफल। काफल आप पता नहीं, आप नहीं जानती होंगी, मेरा ख्याल है दोस्तों नहीं जानते होंगे।
0: एक तरह का फल होता है।
1: फल तो होता है, लेकिन इसका हम लोग आज क्या कहते हैं?
0: सैतूस।
1: अच्छा, बेबेरी। जी बिल्कुल जी, जिसको हम लोग बेबेरी भी कहते हैं। बहुत अच्छा। तो इसको जानने की कोशिश करो कि अलग अलग भाषाओं में जो आपके साथी बैठे हैं अलग अलग भाषाओं के, वो साथी इन शब्दों को क्या कहते हैं, क्या उनके यहाँ क्या नाम है इसके लिए। तो एक बार जरा सा जरूर जानने की, आपके पास एक पूरा शब्द भंडार हो जाएगा और एक ही खाने की चीज के लिए अलग अलग नाम जो हमारे देश में मशहूर है, अलग अलग राज्यों में, वो भी आप इकट्ठा कर सकोगे, आप बहुत कुछ जान पाओगे। तो इसको जरूर करना साथियों। एक और जिक्र आया है चेस्टनट। चेस्टनट सुना है?
0: इस जमाने में तो नहीं सुना।
1: देखा नहीं होगा। वॉलनट सुना होगा। अखरोट सुना होगा।
0: हाँ, अखरोट।
1: तो अखरोट की तरह का एक फल होता है चेस्टनट। ये सब पेड़ उन्होंने शिमला की पहाड़ियों में देखे, रास्ते में घूमते हुए, तोड़कर खाते हुए, जो मस्ती की है उस मस्ती को याद कर रही हैं। और मस्ती को याद करते करते लेखिका अनजाने में ही हमें पूरा का पूरा उन फलों का परिचय देती चलती है कि कौन कौन से फल हैं, कौन कौन से नट्स हैं जो उस क्षेत्र में हो रहे हैं, होते थे, और आज हमें किस नाम से हम उनको जानते हैं, आज अलग अलग राज्यों में किस नाम से हम उसे जानते हैं, ये भी वो कहीं बताती जाती है। और ये भी बताती चलती हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से फल होते हैं, ये भी बात है। आपको अखरोट हर जगह तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, हर जगह नहीं होंगे, तो वो पहाड़ियों पर होते हैं, तो ये अखरोट हर जगह आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, अखरोट की तरह के ये फल भी हर जगह नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो यह भी हमें पता चलता जाता है कि ज्योग्राफी भी थोड़ी बहुत आप जानते चले जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से फल होते हैं, कौन से खान पान होते हैं, यह भी पता चलता है। फिर साथ में चने जोर गरम का जिक्र करती है, एकदम से कहती है कि हम लोग चना जोर गरम खाते थे, उसके सामने ही जब हम लोग रास्ते से गुजरते थे, तो रास्तों से आगे जब हम चर्च जाखू की पहाड़ियों पर पहुंचते थे, तो जाखू की पहाड़ियों पर चर्च दिखाई पड़ता था, उसके सामने ही एक स्कैंडल पॉइंट हुआ करता था शिमला में, तो स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने कुछ दुकानें हुआ करती थी, उन दुकानों में क्या हुआ करता था उसका जिक्र करती है। सबसे पहले तो उनको ध्यान आता है कि हम जब उन सड़कों पर चलते थे, रास्ते पर चलते थे, तो क्या खाती थी? चने जोर गरम। अच्छा, चने जोर गरम किस चीज में खाते हो, ध्यान है आपको? कागज का एक
0: कागज की पुड़िया बना के खाते हैं।
1: हाँ, और कागज की पुड़िया का शेप कैसा होता है?
0: वो गोल होता है और नीचे से ना मुड़ जाता है।
1: ये खुद हाथों से बना लेते
0: हैं। हाँ, हाथ से बनाते, कागज से बनते हैं।
1: इसके लिए किसी चीज की जरूरत
0: किसी की जरूरत
1: कितना सुंदर है कि आप खान पान के लिए आप बिल्कुल हाथ से बना हुआ, बिल्कुल किसी चीज की जरूरत नहीं, आराम से एक कागज जो कि रद्दी कागज जिसको हम लोग रद्दी में फेंकने जाते हैं, उन कागजों से बाकायदा कोने बन जाते हैं, और वो भी कितनी सहूलियत से, कितनी वैज्ञानिक ढंग से कि ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, आसानी से उसमें से आप दाने निकाल लो। और फिर लेखिका एक बहुत सुंदर बात करती हैं, वो कहती हैं कि जब हम वो खाते हुए चलते थे ना तो हमारी चाल बदल जाती थी। तुम भी जब मस्ती में अपने साथियों के साथ खाते हुए, दोस्तों ध्यान रखना कि सामान्य ढंग से चलना, बिल्कुल बिना निष्फिक्र होकर, जिसको कहते हैं निश्चिंत होकर, निष्फिक्र होकर निश्चिंत होकर चलना, और ऐसे चलना कि स्कूल जा रहे हो या किसी काम से जा रहे हो, दोनों चाल में फर्क होता है। आज से जरा ये भी ध्यान देना शुरू कर देना कि लोग चलते हैं तो कब कौन सी चाल है, आप बिना समझे बिना पूछे उनसे जान जाओगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनकी चाल को देखकर समझ पाओगे कि उनके भाव क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, सब कुछ आप समझ पाओगे। उसका भी जिक्र यहाँ पर लेखिका ने किया है। और साथ ही उन्होंने आगे चलती हैं, बाजार देखती हैं, दुकान के सामने में क्या बिकता है, तो एकदम से उन्हें याद आता है कि उस दुकान में रेल का जो उस जमाने में जो टॉय ट्रेन चलती है ना, खिलौना गाड़ी एक चलती है वहाँ पर शिमला में, जो कालका से लेकर के शिमला तक जाती है, तो वो बाकायदा एक छोटी सी ट्रेन होती है और कई ना उसकी नहल टनल के बीच से जाती है, गुफाओं के बीच से जाती है। तो वैसा ही एक मॉडल भी पहले बहुत बिकता था, क्योंकि वो शुरुआत थी ना, तो शुरुआत के समय मॉडल भी बहुत अच्छे से बिकता था, लोग उसको पसंद करते थे, तो लेखिका उसका जिक्र करती हैं। जैसे ही ट्रेन का जिक्र करती हैं तो वो कहती हैं कि पहले वही हमें हवाई जहाज की तरह लगा करता था, उसकी गति हमें लगता था इतनी तेज, और आज आप जब उस खिलौने गाड़ी में चढ़ोगे ना बच्चों, तो आप देखोगे, आप चढ़े भी होंगे, आपको पता होगा कि आज लगता है कि हमें कितनी धीमी चल रही है, लेकिन फिर भी वो रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि गति अपने आप बढ़ जाती है। तो उसके बाद हवाई जहाज का जिक्र करती है कि बहुत इक्के दुक्के चला करते थे, ज्यादा नहीं चलते थे। एकदम उसके बाद लेखिका आ जाती है कि जब बाजार की बात करती है तो बाजार में उनका ध्यान जाता है कि बाजार में तो चश्मे की दुकान भी होती थी, है ना, और चश्मे की दुकान में जब जाती हैं, जैसे ही चश्मा का दुकान उनको याद आता है, तो उनको याद आता है कि उनको एक चचेरा उनका भाई हुआ करता था।
0: भाई
1: वो क्या करता था?
0: वो ने चढ़ाया करता था।
1: क्या चढ़ाता
0: था? सूरत बनी लंगूर की।
1: पढ़ो जरा, बताओ क्या है।
0: आँख पर लगाए चश्मा, तिनका सूरत बनी लंगूर की, ये लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की।
1: ठीक है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। जैसे भाई बहन आपस में चिढ़ाते हैं, उसका भी जिक्र किया है इन्होंने, और खास तौर से चश्मिश कह करके तो सब लोग चिढ़ाते हैं, तो आपको पता होगा। लेकिन उन्होंने एक कविता ही बना दी। पहले के जमाने में साथियों, आपको ध्यान होगा कि जैसे ही हम एक दूसरे को चिढ़ाते थे ना, तो कविताएं बना देते थे, खेल खेल में कविताएं बना देते थे। तो ये एक बहुत बढ़िया परंपरा थी। आप भी जरा याद करो, आज क्या आप लोग खेलते हो तो ऐसा कुछ करते हो, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए कविताओं की पंक्तियां तुकबंदियां करते हो क्या? करने की कोशिश करो, क्योंकि आप शब्दों से खेलोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे, आप शब्दों से खेलते हुए पूरी दुनिया को जान पाओगे, तो इसलिए पूरी शब्दों की दुनिया को जान पाओगे। तो इसलिए साथियों, एक बार करके देखना, बहुत मजेदार सी कविता का जिक्र इन्होंने किया है कि आँख पर चश्मा लगाए। उन दिनों तो लेखिका को बहुत बुरा लगता था, जाकर उन्होंने शीशे में अपने देखो, आईना में देखा अपने को, और कहा इतनी भी बुरी नहीं लगती हूँ मैं चश्मा लगा करके। फिर बाद में वो कहती हैं कि चश्मा आज मेरी सूरत का हिस्सा बन चुका है, मेरे चेहरे का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, इसे हटाया नहीं जा सकता है। जैसे मेरी आंखें हैं, मेरे नाक है, मेरे कान है, बिल्कुल उसी तरह से मेरे सूरत पर यह चश्मा फिक्स हो चुका है। अब उनको चश्मा कैसे पढ़ने लगी, कैसे उन्होंने एक बहुत बढ़िया और भी जिक्र किया है कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा था कि आप धीरे थोड़े दिन लगाओ चश्मे, उतर जाएंगे, लेकिन कभी नहीं उतरा। फिर लेखिका ये भी कहती है कि न उतरने का कारण ये भी है कि मैं बहुत मध्यम रोशनी में पढ़ती थी, यानी मध्यम रोशनी में नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, तेज रोशनी, अच्छी रोशनी में पढ़ो, हमेशा अच्छी रोशनी में पढ़ो तो आपकी आंख ठीक रहेगी। तो अपनी आंखों को खराब करने का जिम्मेवार वो खुद को ही बताती हैं। फिर उनका जिक्र आता है, लास्ट जो अंतिम है उसमें वो कहती हैं कि टोपी पहन करके मुझे चलना उन दिनों बहुत खराब लगता था, लेकिन आज टोपियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो पहले शुरुआत में और बाद में कितना अंतर आ जाता है। पहले जो चीज हमें बुरी लगती है वो बाद में अच्छी लगने लगती है। आप खुद भी 3-3 साल के अंतर में बच्चों आप लोग देखिएगा कि आपकी पसंद बदल रही है, जो पहले पसंद नहीं आ

0: चर्चा करिए, माँ बाप से चर्चा करिए। मोहल्ले में तरह तरह के लोग रहते हैं, एक मोहल्ले में एक ही क्षेत्र के लोग नहीं रहते हैं, कई क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनसे जानकारी हासिल करिए। और पुरानी किताबों से भी थोड़ी जानकारी हासिल करिए, पत्रिकाओं से जानकारी हासिल करिए। बहुत सी पत्रिकाएं भी हमारे सामने अभी आजकल हम लोगों को पढ़ने को मिल जाती हैं, तो उन पत्रिकाओं का, अभी तो गांधी का एक बहुत ही किताब आई है, गांधी के बचपन पर, एक था मोहन, उसको बच्चों पढ़ना, बहुत सुंदर तरीके से। और बचपन में गांधी भी शरारत करते थे, जैसे कृष्णा सोबती ने कहा है ना, शरारत करना, हर कोई शरारत करता है, लगता है कि जो बड़ा हो गया, जो महान व्यक्ति हो गया, वो कभी शरारत नहीं करता था, ऐसा नहीं है। सबका बचपन एक जैसा होता है और हर कोई बचपन में खेल करता है, शरारत करता है, लेकिन लेखिका कुछ और भी करती हैं, उन तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो हर चीज को ऑब्जर्व करती हैं, अवलोकन करती हैं, जो रास्तों में उन्हें दिखाई पड़ता है उसको देखती हैं, बाकायदा उसके नाम से पहचानने की कोशिश करती हैं, जो एक तरह की सृजनात्मकता है। साथियों, आप भी ऐसा करना, तो ये जरूर करना। मैं थोड़े से कुछ भाषा पर बात कर लूं तुमसे, तुम बता सकोगी इसमें कुछ चीजें आई है। अब जैसे मारना से मार बनता है, है ना, काटना से क्या बनेगा,
1: काट,
0: पलटना,
1: पलट
0: ये सुना होगा, डायलॉग भी बहुत ज्यादा कविता में है ना, पलट तो एकदम से पलटना से पलट, फिर सीखना से क्या बनेगा, सीख, हड़प से
1: हड़पना
0: से हड़पना। बिल्कुल। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ चार दिन, कुछ व्यक्ति, एक लीटर, ये क्या है, इसको क्या कहोगे तुम, इन प्रयोगों को क्या कहा जाएगा, ये परिमाणवाचक,
1: परिमाणवाचक
0: संज्ञा है ना। तो अब इनको इसमें विशेषण भी आपको दिखाई पड़ेगा। अब जैसे मैं तुमको एक वाक्य पढ़ती हूँ, मुझे दो दर्जन केले चाहिए, इसमें क्या है बताओ,
1: दो दर्जन,
0: ये दो दर्जन क्या है,
1: वो संधिवाचक
0: नहीं ये विशेषण है, लेकिन कैसा है, कैसा विशेषण है, परिमाणवाचक, यानी जो संख्या को बता रहा है, परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह से कपड़ों में जो इन्होंने कहा ना कि कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां शब्द इसमें आया है ना, मेरी मौसी कहा है, तो अब इसमें मेरी क्या है बताओ तो जरा सा,
1: दिलचस्पी,
0: हाँ नहीं नहीं मेरी क्या है,
1: मेरी
0: सर्वनाम है ना,
1: सर्वनाम
0: है ना, जो किसी व्यक्ति के लिए, जैसे मैं संध्या मेरा नाम है, आपका नाम तनिषा है, तो आपके लिए अगर आप जो शब्द प्रयोग कर रही हैं, मेरी है ना, और मैं जो प्रयोग करूंगी, सब सर्वनाम है, तो अभी सर्वनामों के लिए दिलचस्पियां जब आई, मेरी दिलचस्पियां, तो दिलचस्पियां क्या हो गई सर्वनाम के साथ जुड़ी, तो इन संज्ञाओं की विशेषता बता रही है, विशेषता बता रही है, तो संज्ञाओं की विशेषता बताने वाली है ये। तो साथियों ध्यान दो कि शब्दों में जो शब्द प्रयोग किया गया, अब आप मतलब मेरी दिलचस्पियां मैंने कही, कुछ और शब्द भी हो सकता है, इसके दूसरे शब्द बना करके देखो, दूसरे विशेषण लगा करके देखो, मेरी पसंद, पसंद भी तो आपका विशेषण हो गया ना, मेरा पहनावा, मेरा खान पान है ना, मेरी चाल, मेरा हालचाल,
1: मेरा ढंग
0: और भी कुछ
1: मेरा उठना, मेरा बैठना,
0: वाह बहुत बढ़िया। तो इस तरह के कुछ विशेषण के खेल करके देखो, अपने साथियों से, अपने भाई बहन के साथ ही खेल करके देखो, और आप पाओगे कि आपके पास बहुत सारे शब्दों की दुनिया खड़ी हो गई है, बहुत सारा शब्द भंडार हो चुका है, और इन शब्दों से बाकायदा आप जीवंत अनुच्छेद लिख सकते हो, जीवंत अपने बचपन के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, अपने पिछले जीवन के बारे, पिछले समय के बारे में लिख सकते हो, और अपने माँ बाप के पर भी थोड़ी सी चर्चा कर सकते हो, अपने माता पिता से थोड़ी सी बातें करो, और बातें करके उनके बचपन की बातों को भी लिख दो, हो सकता है आपके माता पिता ना लिख पाते हो, आप लिख दो उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर किसी को जब कोई अपना बचपन याद आता है तो उसे जीने की इच्छा हो जाती है, और ज्यादा उत्साह आ जाता है जीवन में। तो साथियों आज हमने बचपन पाठ के जरिए, कृष्णा सोबती के बचपन पाठ के जरिए हमने पूरी यात्रा कर ली शिमला की बाकायदा, और शिमला के साथ साथ वहाँ के पहनावे, ओढ़ावे, खान पान, रहन सहन सब कुछ जाना हमने, और लेखिका की आंखों से देखते हुए केवल वही नहीं जाना, हमें अचानक यह भी ध्यान आता रहा साथ साथ, जब लेखिका वहाँ के रास्तों का वर्णन कर रही थी, तो एक दिल्ली में रहने वाला बच्चा बाकायदा दिल्ली की सड़कों को देख रहा था उस वक्त, एक नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला बच्चा वहाँ की पहाड़ियों को देख रहा था, दक्षिण भारत में रहने वाला बच्चा वहाँ के मसालों के

0: पेड़ों को देख रहा था, तो बाकायदा हर बच्चा अपना अपना बचपन देख रहा था। इनके बचपन के बहाने अपने बचपन की यात्रा आप सब लोग कर रहे थे, तनिषा आप भी कर रही थी, तो मजा आया आपको इस बचपन के बारे में, है ना? इस बचपन के सहारे आप जब बहुत बड़ी हो जाएंगी तो आप भी इसी तरह का एक अपना बचपन की यादों को ध्यान में रखते हुए, स्मृति को रखते हुए लिखिएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए तनिषा आपको आज से ही डायरी लिखनी पड़ेगी। जो कुछ आज अच्छा लगता है, जो कुछ आपको बढ़िया दिखाई पड़ता है, अवलोकन करते हैं आप, ऑब्जर्व करते हैं, उन सब को रोजाना डायरी में लिखते चले जाओ, दर्ज करते चले जाओ। और दो चार साल बाद जब अपनी ये डायरी खोलोगे तो तुम्हारे पास बाकायदा कच्चा माल होगा, कुछ भी लिख सकते हो उस पर, यात्रा संस्मरण लिख सकते हो, अपनी स्मृतियां संस्मरण लिख ही सकते हो, कहानी लिख सकते हो, कुछ बहुत कुछ लिख सकते हो। तो आज ही से शुरू हो जाओ और लिखो। साथियों, आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना बचपन के बारे में। अब इसके सहारे आप बहुत से लोगों के बचपन के बारे में जान सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि गांधी जी ने भी अपने के बचपन के बारे में जानिए, सुभाष चंद्र बोस के बचपन के बारे में जानिए, ये तो बड़े लोग हैं। लेकिन सामान्य लोगों के बचपन के बारे में भी, अपने माता पिता के, अपने साथियों के बचपन के बारे में भी जरूर जानो, और आपको पता चलेगा कि सबके बचपन में कुछ विशेष होता है। सबके बचपन में कुछ बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है, सिर्फ उसका ही ध्यान गया है। तो आप अपने इस बचपन की बातों को डायरी में तो दर्ज कर ही रहे होंगे। तो आज बहुत कुछ हमने जो चर्चा की, इन बातों को भी लिखिएगा अपने नोटबुक में, और साथ ही और भी कहानियां भी लिखने की कोशिश करिएगा। हम सोचते हैं कि इस पाठ पर और भी आपसे चर्चाएं करते रहेंगे आने वाले समय में। हो सकता है कि कुछ दूसरे दृष्टिकोण से इस पाठ पर हम फिर से चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन आज की चर्चा यहीं खत्म होती है।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
6: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी का

0: वो हाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले एक से दो उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। वेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: सुनो भाई,

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है, इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान, कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और इसी बीच हमारे से जुड़ी हुई है एक बहुत ही खास हस्ती, जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। परिचय कराने से पहले हम बता देते हैं कि उनको रेडियो की दुनिया का अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि कहीं ना जाएं, उन्हें सुने। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीतिका उनियाल जी, जो कि FM वो पर बतौर रेडियो जॉकी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपको कैसा लग रहा है?
2: सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो शारदा 90.8 FM, इसके माध्यम से आज मैं आप सभी के बीच सम्मिलित हूँ, यानी कि रेडियो की इस दुनिया से मेरा संबंध और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि आज के विशेष दिन पर आपने मुझे आमंत्रित किया और आज मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और बहुत ही सुहाना सफर रहा है अभी तक रेडियो की दुनिया में, और उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर भी हम कुछ नया देंगे। हमारा हमेशा प्रयास यही रहना चाहिए।
1: जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के बारे में, और रेडियो को जोड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसा कि हमारी थीम भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेडियो एम्पावरिंग वॉइस ऑफ कम्युनिटी। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या AI कम्युनिटी की आवाज को और सशक्त बना सकता है?
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी रेडियो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और आज के युग में जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हर जगह है, तो रेडियो की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहीं ना कहीं और सशक्त करेगा। सशक्त कहने का मतलब ये है कि हम और भी ज्यादा एम्पावर हो जाएंगे। जहां पहले हम स्ट्रगल किया करते थे कि हम उचित सामग्री इकट्ठा करें और फिर अपनी स्क्रिप्ट बनाएं, स्क्रिप्ट बनाने के बाद फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग करें, फिर उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें या फिर लाइव जाकर अपने प्रोग्राम्स को दें, लेकिन अब चुटकियों में, क्षण भर में प्रोग्रामिंग आसानी से की जा सकेगी, क्योंकि हमारे पास AI के उपकरण यानी कि टूल्स मौजूद होंगे, जिसकी मदद से हम कुछ ही समय के अंदर अपने काम को कर पाएंगे।
1: हाँ, तो मैम, हम मान सकते हैं कि AI समुदाय की आवाज को और सशक्त बनाएगा और समुदाय के बीच में जाकर और बेहतर प्रोग्रामिंग करेगा। ग्रामीण लोगों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बच्चों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, सब पर AI बेहतर कंटेंट के साथ प्रोग्राम बना रहा है और लोगों के बीच में जाकर एक लोकप्रिय भूमिका में स्थित भी है। तो मैम, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से रेडियो के कंटेंट प्रोडक्शन में सबसे बड़ा बदलाव हमें क्या देखने को मिलेगा?
2: देखिए, अगर कंटेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम अगर अतीत के पन्नों को झांक कर देखिए, तो हमेशा से ही हमने रेडियो के माध्यम से कंटेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। कंटेंट का अर्थ यहाँ पर है हमारी जो आम जनता है, जिनके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हीं की बात उन्हीं तक पहुँचानी है, जो मुद्दे हैं उन तक पहुँचाने हैं। तो प्रोग्राम के कंटेंट में इस तरह से फर्क पड़ेगा कि अब हम AI टूल्स के माध्यम से या AI के संपर्क में आने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में, यानी कि हमारे समुदाय के भी किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे जो उस परेशानी से ग्रसित हैं या जो चाहते हैं कि उनकी आवाज आम आवाज बन जाए और सब तक बात पहुंचे, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी।
1: जी गीतिका जी, आपने हमारे लिसनर्स को बहुत जरूरी और बहुत ही बेहतर जानकारी दी है। जैसा कि आप FM रेनबो पर इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं, समुदाय के लोगों से जुड़ रही हैं, अनेक कार्यक्रम बना रही हैं, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, देश विदेश से संबंधित कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, और आपकी आवाज एक सशक्त माध्यम है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम किसी भी रेडियो प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते समय मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, क्या AI भी जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो मानवीय संवेदनाओं को समझ पाता है?
2: जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, AI अगर हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं, तो AI हमें सशक्त सिर्फ डेटा देकर बनाएगा।
1: जी,
2: हमारी पूरी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि भावनात्मकता की अगर बात की जाए तो मनुष्य में है। जब मनुष्य की बात की जाए, तो मनुष्य ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल टूल्स बना रहा है जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ना कि उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कभी क्या किसी को सुना है कि उसने अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया? ऐसा कभी होता नहीं है, और कभी होगा भी नहीं। तो एआई सिर्फ मदद करने वाला एक ऐसा टूल है जो हमारे समय को कम करेगा, यानी कि जितना समय हम पहले से लगाते आ रहे हैं किसी काम को करने में उसे कम कर देगा। लेकिन जब भावनाओं की बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, तो मनुष्य के आगे कोई और नहीं, मनुष्य अपने आप में एक ही है और एक ही रहेगा, और उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वही रहेंगी जो मनुष्य के पास है। मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य एक समय पर एक काम कर पाता है, चीजों का आकलन कर पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है, रो पाता है, हंस पाता है। आपने अगर अपने बच्चे के लिए घर पर किसी रोबोट को खरीदा है जो सिर्फ चलता है, नाचता है, गाता है, क्या कभी आपने उसको रोते हुए सुना है? कभी क्या आपने उसको हंसते हुए सुना है? वो तो आप ही के द्वारा चाबी घुमाने पर आपकी भाषा बोलता है, आप नहीं बनता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसा कि एआई इन दिनों कंटेंट फॉर्मेशन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सामुदायिक रेडियो हैं, सुनो शारदा 90.8 एफएम। हम काम ही समुदाय के लिए करते हैं, लोकल वॉइस को आगे लेकर जाना। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से बात करना चाहती है। हम समुदाय की आवाज बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि एआई जहां हर तरीके के कंटेंट का निर्माण कर रहा है, क्या लोकल भाषाओं में भी एआई अपना कमांड कर पाएगा? कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं ब्रजभाषी बोली जाती है। अगर हमें अपने समुदाय से जुड़ना है तो हम लोकल लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या एआई लोकल लैंग्वेज पर कमांड कर पाएगा या कर पा रहा है, और वो कितना समुदाय तक पहुंच पा रहा है, ये आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
2: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब यहाँ पर बात क्षेत्रीय भाषाओं की हो रही है, जैसा कि आपने स्वयं से प्रश्न किया है इस बात में कि हम कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, और कम्युनिटी यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों के समुदाय, अलग अलग गाँव के समुदाय स्टेशन हो गए, तो वहां पर क्षेत्रता बदलेगी, क्षेत्रता बदलेगी तो भाषा बदलेगी, भाषा बदलेगी तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जब हम अपने जो हमारा प्रदेश है, जो हमारी कम्युनिटी है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे ना तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्शन के लिए जरूरी है उस भाषा का इस्तेमाल करना अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कॉन्टेंट में, जिससे कि समुदाय है वो हमसे जुड़े। अगर मैं किसी समुदाय को संबोधित कर रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो शायद मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगी। एआई निश्चित रूप से यहाँ मददगार होगा। एआई टूल्स का इस्तेमाल कर हम किसी और भाषा में, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है जो किसी और भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये मेरे समुदाय के लोगों के बड़ा काम आने वाला है, तो एआई टूल्स को यूज कर उसका इस्तेमाल कर मैं उस भाषा का अनुवाद करवा सकती हूँ। क्षण भर में मेरे पास अनुवाद आ जाएगा, और क्योंकि मैं जानकार हूँ, मैं समुदाय से अपना संबंध रखती हूँ और समुदाय के लोगों को जानती हूँ, उनकी भाषा को जानती हूँ, और मैं फिर उसको अनुवादित कर अपनी भाषा में उन तक पहुंचा सकती हूँ।
1: हाँ, तो हम मान सकते हैं कि लोकल भाषाओं में एआई अच्छा कंटेंट बना सकता है।
2: जी
1: मैम, आप हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारे समुदाय के लोग जमीनी स्तर पर आपसे जुड़ें। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कम्युनिटी रेडियो के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधनों में कम्युनिटी रेडियो को रन करना होता है। हम टीम मेंबर्स समुदाय के बीच में जाकर समुदाय की आवाज बनना चाहते हैं, ऐसे में एआई की तकनीक को हम किस तरीके से अपना सकते हैं? क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग का जरूरत है, या हम समुदाय के लोगों के बीच में जाकर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट एआई की से बनाकर जो कि लोकल डायलेक्ट में हो उनके बीच पहुंचा सकते हैं? इस बारे में आप मुझे थोड़ा
2: देखिए, जब आपने कहा कि आपको अपने समुदाय से जुड़ना है
1: जी,
2: तो मुझे लगता है कि आधी आत्मीयता तो आपने वहीं पूरी कर ली। जब समुदाय में यानी कि समुदाय में रहने वाले लोगों से आप जाकर मिले, आपने उनसे वन टू वन टॉक करी, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे आत्मीयता वहीं स्थापित कर ली। एआई उनकी मनोस्थिति नहीं जानता है, एआई आपको मदद करेगा, टूल्स मदद करेंगे कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में क्या क्या परेशानियां हैं। आपके पास हो सकता है सवालों की एक फेहरिस्त जरूर बन जाए, लेकिन सच में वो सवाल या वो मुद्दे उस समुदाय में हैं भी, या उस समुदाय को संबोधित करने वाले हैं भी या नहीं है, वो आप समुदाय से बात करके पता करेंगे। तो जो भी आप एआई की मदद से सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं उसका क्रॉस चेक जरूर कीजिए। पूरी तरह से किसी भी उपकरण पर अपने आप को निर्भर कर देना ये गलत होगा। आज के युग में जब व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, तो आप किसी उपकरण पर विश्वास कर फिर से ऐसे कैसे एक रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं जो सीधा जुड़ा हुआ है आम जनमानस से।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसा कि हम कोई भी रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं समुदाय के लिए तो हम काफी रिसर्च करते हैं, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, समुदाय के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि लोगों की असल मुद्दे क्या है जो रेडियो के माध्यम से जाने चाहिए। लेकिन आजकल बहुत तेजी के साथ स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है। क्या हमारे प्रोग्रामों की जो क्रिएटिविटी है उस पर AI का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया है, या आने वाले समय में AI ही स्क्रिप्ट लिखेगा तो फिर रिसर्च करके प्रोग्राम कैसे बनेंगे? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
2: ये प्रश्न भी आपका बहुत बहुत अच्छा है। AI स्क्रिप्ट, मैंने फिर कहा कि AI अपना दिमाग

0: एक है, आप मुझ जैसी नहीं और मैं आप जैसी नहीं, तो भला फिर मुझ जैसा एआई कैसे हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो कहते हैं ना कि मेरा क्लोन कोई भी नहीं अगर सही मायने में देखा जाए।
1: हाँ, सब अपने आप में
0: पूर्ण है, यूनिक है। तो क्योंकि मुझ जैसा कोई नहीं तो मशीन मेरे जैसी कैसे हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मशीन मेरे जैसी नहीं हो सकती, इसलिए उस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते।
1: जी मैम, आपने बेहद अच्छी बात कही कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है और कोई किसी का क्लोन नहीं बन सकता है। मैम, हम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम समुदाय की बात करते हैं। ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो सरकार तक जानी चाहिए। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या एआई की मदद से हम ग्रामीण स्तर की कहानियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकते हैं?
2: देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए आपको अब, जैसा कि आज मैं सिर्फ एआई नहीं कहूंगी यहाँ पर, आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लगता है कि शायद आज सोशल मीडिया ही काफी है।
1: बिल्कुल,
2: कि आपने आज किसी मुद्दे पर बात करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके बाद जिस तरह से वो वायरल होता है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो देश का मुद्दा बन जाता है। और यही कारण है कि शायद मन की बात जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हुए हैं कि जो देश के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचे, और जब वो मुद्दे उन तक पहुंचते हैं पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, तो वो खुद उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं बकायदा रेडियो पर। तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें आत्मिक बने रहना है, एक दूसरे से बात करते रहना है, और निश्चित रूप से हमारी बात पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
1: जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं बेहद जरूरी हैं, जो एआई उस तरीके से नहीं रख सकता जिस तरीके से हम रखते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी विषय पर है, क्या एआई के कारण रेडियो में मानवीय संवेदनाएं और भावनाओं की कमी देखने को मिलेगी? क्या इस वजह से श्रोताओं का जुड़ाव हमसे कम होगा? अगर हम एआई यूज करें तो हम किस हद तक यूज करें कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहें?
0: जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इस पर यही कहूंगी कि एआई यूज कौन कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ट्रांसमिशन की, पैकेजिंग की, तब मैं कहती हूँ कि हम एआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई हमारा काम थोड़ा कम कर देगा कि हमें प्रोग्राम को पैकेज करना है। आप और मैं ये साक्षात्कार कर रहे हैं एआई की मदद से, आने वाले समय में आपने जो बात की और आपने बीच में मान लीजिए कोई गाना लगाना है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं कौन सा गाना लगाऊं। एआई टूल का इस्तेमाल कर तुरंत आपके लिए एक गाने को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और देखिए, जो समय आप आधा घंटा लगाते उस गाने को ढूंढने में, एआई टूल की मदद से आपने उस गाने को ढूंढकर
1: कुछ सेकंड्स में ढूंढकर लगा दिया।
0: तो कहने का अर्थ यह कि आपकी प्रोग्रामिंग पैकेजिंग के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल बेहतरीन है। लेकिन फिर दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी बार बार कि जब मानवीय मुद्दों की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो दुनिया में हम जैसा कोई नहीं, यानी कि मनुष्य जैसा कोई नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि जो संचालन कर रहा है कार्यक्रम का, वो कितना इन्फॉर्म्ड है, वो अपने कार्य के प्रति, अपनी रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए कितना ज्यादा सजग है। क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये चाहता है कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी कहूँ ना, वो सब कुछ विश्वसनीय हो,
1: क्रेडिबिलिटी
0: बहुत जरूरी है। तो वो एआई पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेगा। वो जो भी सामग्री तैयार कर रहा है, जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ एआई की मदद से अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, वो किताबें ढूंढेगा, वो अखबार ढूंढेगा, वो रिसर्च पेपर्स देखेगा, उसके बाद ही संकलन करेगा, संग्रहण करेगा और अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेगा। हाँ, एआई की मदद ले सकता है, पर पूर्ण रूप से वो एआई पर निर्भर नहीं करेगा। जो लोग एआई पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रोग्रामिंग में, उनके कार्यक्रमों में आपको कहीं ना कहीं अलगाव महसूस होगा, आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये मेरी बात नहीं कही जा।
1: तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे श्रोता उतना नहीं जुड़ पाएंगे जितना कि उस प्रोग्राम से जुड़ पाते हैं जो हम खुद रिसर्च करके, मेहनत करके, समुदाय के बीच में जाकर उनकी संवेदनाओं को महसूस कर बनाते हैं।
0: अब देखिए, माना आप और मैं यहाँ पर एक साक्षात्कार कर रहे हैं और आपको मेरी जिंदगी की वो पहलू पता है जो शायद किसी को नहीं पता, तो बताइए कि आत्मीयता इस बात से ज्यादा होगी कि आपने उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर आपने एआई के माध्यम से मेरे बारे में ढूंढ कर
2: या उसके द्वारा एक स्क्रिप्ट बनाकर मुझसे सवाल
1: नहीं,
2: पूछ ली
1: जो

0: मुझे आपके बारे में जानकारी है, जो आत्मीय जानकारी है, उस पर अगर मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दूंगी तो मेरे श्रोता ज्यादा जुड़ेंगे आपसे।
1: जी जी, तो यही फर्क रहने वाला है कि जो लोग पूर्ण रूप से AI पर निर्भर रहेंगे वो कहीं ना कहीं उस मानवीय पहलू को भूल जाएंगे।
0: जी,
1: वो उसको उजागर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग जो काम करेंगे, जो करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्यादा जुड़ेंगे अपने लोगों तक।
0: अच्छा मैम, कहते हैं कि रेडियो दिल की आवाज है। रेडियो पर जब कोई गाना बजता है तो वो हमारे दिल तक पहुंचता है। क्या मशीन दिल की आवाज सुन सकती है? मशीन से मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है।
1: जी, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर ने ये दिल सिर्फ इंसान को दिया है, मशीन को नहीं, तो भला मशीन हमारे दिल की धड़कन कैसे सुन पाएगी? मैं फिर से कहूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बार बार बात हो रही है, ये मानव की ही खोज है। भगवान ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो इंसान ने मशीन को बनाया है। जिस तरह से ईश्वर सर्वोपरि है, उसी प्रकार मानव सर्वोपरि है मशीन के लिए। मशीन को भी ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन को भी चलाना पड़ेगा, मशीन को भी कमांड देना पड़ेगा, तो वो हम ही तो देंगे ना। तो जब हम ही देंगे तो हम क्यों सिर्फ मशीन लर्निंग पर, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से? मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर।
0: तो मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो करना है, लेकिन हमें पूरी तरीके से उस पे डिपेंड नहीं रहना। मैम, आजकल एक चीज बहुत सुनने में आ रही है, वॉइस क्लोनिंग। कई लोगों ने कहा भी कि हमारी वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये नैतिक रूप से सही है?
1: मैं कहूंगी कि नैतिक रूप से सही इसलिए नहीं है कि कल चलकर माना कि रेडियो स्टेशंस के लिए अगर क्लोन बना दिए गए और इस्तेमाल भी कर लिए गए, आपने अपनी मैन पावर को कम कर लिया, आपके बहुत सारे मुद्दे सुलझ गए, जहां आप मान लीजिए कि अगर आप किसी रेडियो स्टेशन में 12 घंटे अपने देते हैं तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका क्लोन चल जाएगा, यानी कि क्लोनिंग वॉइस चल जाएगी। लेकिन ये मानिए कि ये जो दुनिया है ना, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर है, खासतौर पर अगर रेडियो की बात की जाए।
0: जी,
1: तो जो हमें यहां सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो कल चलकर लोग अपनाते हैं। और जब किसी चीज को अपनाया जाता है तो उसके सकारात्मक पहलू भी अपनाए जाते हैं और नकारात्मक भी। तो कहीं ना कहीं अगर वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल होने लगा तो कल चलकर बहुत ज्वलंत मुद्दे शुरू होने की आशंका है। क्योंकि कहते हैं कि संसाधन हमारे लिए, मनुष्य के लिए, पर मनुष्य पर निर्भर करता है कि उन संसाधनों को वो कैसे उपयोग में लेकर आएगा। इसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा तो हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, वो शायद कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। कोई भी मेरी आवाज का इस्तेमाल कर मैं बनकर कुछ भी गलत कर सकता है। तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए
0: और इस पर हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। मैम, हम सामुदायिक रेडियो हैं, हम समुदाय के लिए ही काम करते हैं। तो आपने सुना होगा कि सोशल स्टोरी टेलिंग, मतलब समाज से जुड़े हुए मुद्दों की कहानियां जब बड़े मंच पर पहुंचती हैं तो वो लोगों पर काफी गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ में जब हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या AI टूल्स आने से सोशल स्टोरी टेलिंग ज्यादा बढ़े हैं, मतलब लोग सोशल स्टोरी टेलिंग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, या पहले की तुलना में कम हुए हैं?
1: देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि अगर खास तौर पर पत्रकारिता की बात की जाए ना, तो पूरी पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
0: जी,
1: पहले एक जमाना हुआ करता था जब व्यक्ति, जब पत्रकार सिर्फ पेंसिल से लिखा करता था। फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, डिजिटाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी, जो सशक्त पत्रकार हैं, सशक्त लोग हैं, जो आम जन की आवाज आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आज भी शब्दों की गरिमा को, या ये कह लीजिए विषय की गरिमा को बनाए बैठे हैं। आपके कुछ शब्दों से विषय बदल सकता है, उसका मुद्दा बदल सकता है। आप कितने सजग हैं और आप कितने ज्यादा अपनी जो समुदाय है उसके प्रति आप संवेदनशील हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल कर या AI का इस्तेमाल कर आप अपनी जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या फेरबदल हो गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर संवेदनशीलता की बात आती है तो सर्वप्रथम अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल जो है ना, वो सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन करता है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं।
0: जी,
1: तो पूर्ण रूप से संवेदनशील विषयों पर AI पर निर्भर रहना, तो मैं यही कहूंगी क्रॉस चेक।
0: बिल्कुल, क्रॉस चेक बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, बार बार यही कहूंगी, निर्भर नहीं होना है।
0: जी बिल्कुल सही कहा, हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, उन पर निर्भर नहीं होना। तो मैम, अभी तक तो हम रेडियो कहते आए थे, लेकिन आजकल हम सुनते हैं स्मार्ट रेडियो। रेडियो अब स्मार्ट होता जा रहा है, रेडियो पहले से काफी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो रेडियो है उसके भविष्य को AI किस तरफ ले जा रहा है? ये ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा है या इनोवेशन की तरफ लेकर जा रहा है?
1: देखिए, मैं ये कहूंगी कि सर्वप्रथम तो ऑटोमेशन
0: जी,
1: सर्वप्रथम ऑटोमेशन इसलिए है कि एक कार्यक्रम को बनाने के लिए ना जाने कितने दिन लगते थे पहले।
0: बिल्कुल,
1: बहुत दिन लगते थे। रिसर्च की जाती थी, स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, फिर स्क्रिप्ट में भी किस तरह की स्क्रिप्ट है ये डिसाइड किया जाता था। अगर पैनलिस्ट हैं आपके कार्यक्रम में तो आपको पैनलिस्ट को बुलाना होता था। प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारे दिन लगा करते थे, लेकिन अब क्या है, अब दिनों भर में काम हो जाया करेंगे। इनोवेशन तो तब होगा जब हम एक नया फॉर्मेट लेकर आएंगे। कि रेडियो के माध्यम से हमने कहा कि हम टॉक शो कर रहे हैं, हम कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मेट लेकर आते हैं तो इनोवेशन होगा। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी सिर्फ ऑटोमेशन है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही जवाब दिया। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि AI सिर्फ एक सहायक टूल है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से निर्भर होना ठीक नहीं है। मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से AI ने हमारे रेडियो के प्रोग्रामिंग को काफी आसान बनाया है, लेकिन श्रोताओं का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से बदलेगा? हम AI से कार्यक्रम तो बना लेंगे, प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन श्रोताओं का हमारे लिए इंटरेस्ट लगातार किस तरीके से बदलेगा, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: देखिए, श्रोताओं का इंटरेस्ट तभी बदलता है जब आप उनसे उनकी जैसी बात नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत आत्मिक हो रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ जो है ना स्माइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं,
0: जुड़ गए हैं हम,
1: जुड़ गए हैं। रेडियो के माध्यम से भले ही आप अपने श्रोता को नहीं देख सकते, श्रोता आपको नहीं देख सकते, लेकिन आपकी जो आवाज की जो गरिमा है, जिसका जादू है ना, सुनने वाले को अपने रेडियो सेट्स पर यही सुनाई देता है जैसे साक्षात वो व्यक्ति ना मेरे पास मेरे घर में बैठा हुआ है
0: जी।
1: तो अगर हम AI पर बहुत ज्यादा निर्भर होंगे, देखिए AI की भाषा पर अभी भी हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते। आपने कई बार, अगर जो लोग ChatGPT और इन सब का इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक से कहते हैं कि हमने ये स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आप उनकी स्क्रिप्ट और एक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को जब कंपेयर करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आत्मीयता किसमें ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगी और हर बार यही कहूंगी कि मानव मूल्यों का कोई तोड़ नहीं, और AI आपको सामग्री दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जैसे इमोशंस नहीं डेवलप कर सकता, आपके जैसे बात नहीं कर सकता।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे जैसे ना तो इमोशन डेवलप कर सकता है, ना श्रोताओं से इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है। मैम, हम छोटे स्टेशन हैं, हम समुदाय से जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उन्हें AI को किस तरीके से देखना चाहिए, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए या एक अवसर के रूप में देखना चाहिए?
1: जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, चाहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो, प्राइवेट FM स्टेशन हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं, हमारी आवाज किन के लिए है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए है जो हमें सुनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगियों में हमारी वजह से बदलाव आता है, जो बदलाव को महसूस करते हैं। अगर खास तौर पर कम्युनिटी रेडियोज की बात की जाए तो अगर आपको वो उपकरण दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को सशक्त कर सकते हैं तो क्यों नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि टूल्स का इस्तेमाल चाहे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हों या कोई भी FM स्टेशन क्यों ना हो, जरूर करें, क्योंकि अगर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है, जरूर करें। लेकिन हाँ, अगर हम संचालकों की बात करें जो आवाज की दुनिया के जादूगर हैं, उन्हें अपना जलवा आवाज का अपनी ही आवाज में, यानी कि अपने दिल की आवाज के जरिए ही करना है, ना कि AI की दिल की आवाज के जरिए।
0: हाँ, यानी अपनी आवाज का जलवा बरकरार रखना है। मैम, आपसे मेरा अब आखिरी सवाल है, और आपने हमें बड़ा कीमती समय दिया है अपना, लेकिन ये सवाल मेरे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है। हम सामुदायिक रेडियो हैं तो हम समुदाय की बात ही करेंगे, क्योंकि हमारा समुदाय ही हमारी ताकत है। मैम, समुदाय के बीच में जाकर एक बात मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि लोकल भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि समुदाय अपनी भाषाओं से बहुत तेजी से जुड़ता है। तो क्या AI लोकल भाषाओं में प्रोग्राम बनाकर कंटेंट को और जीवंत बना सकता है, और या उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है?
1: मैं तो यही कहूँगी, जब मेरी माँ बचपन से मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय भाषा में बात करती आई और मैंने उस भाषा में अपनी माँ को ढूंढ लिया, तो बताइए क्या AI मेरी माँ बन सकती है? उसी भाषा में क्या AI मुझसे बात कर सकती है जो मार फटकार प्यार दुलार मेरे परिवार से मुझे मिला, मेरी भाषाओं या मेरी भाषा के माध्यम से, जिस भी क्षेत्र को मैं संबंध रखती हूँ, जिस भी क्षेत्र से, तो जो चीज़ मुझे बिन मांगे मिल गई वो मांग कर यानी कि AI के माध्यम से कैसे मिल सकती है? मेरा पूरा जीवन अपने क्षेत्रीय परिसर में गुजरा है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो मेरे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे दिया, जो भाषा मुझे प्राप्त हुई वहां से, AI जिसका जन्म अब हुआ, वो कैसे मुझे वो दे सकता है जो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ था ही नहीं? तो जो मेरे साथ बचपन से था ही नहीं वो मुझे समझ ही नहीं सकता, जो मुझे समझ ही नहीं सकता वो मुझे वो क्या कैसे दे सकता है जिस बात की मैं कल्पना कर रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि क्षेत्रता की अगर आप बात कर रहे हैं तो व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से संबंध है वही उन मूल्यों को आम जनमानस तक पहुंचा सकता है जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है। AI फिर कहूंगी कि ये सहायता का उपकरण है।
0: बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच में एक सेतु का काम कर रहा है
1: जी।
0: AI हमारी मदद कर रहा है सूचनाओं को देने में, हमें अपडेट करने में, हमारे टूल्स को आसान बनाने में, तकनीक को आसान बनाने में। फिर भी जो हमारी संवेदनाएं हैं उस पर हमें उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से हम करते आए हैं। हमें समुदाय के बीच में जाना होगा, लोगों को सुनना होगा, समझना होगा और लोगों की हर बात को अपने स्तर से पहुंचाना होगा। हाँ, तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे मेरे साथ गीतिका उनियाल जी को, जो कि FM रेनबो पर बहुत फेमस प्रेजेंटेटर हैं। उनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है और लोग उनकी आवाज़ से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम और आप भी जुड़ गए। आज स्टूडियो में उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और हमसे AI तकनीक और सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर काफ़ी बातें शेयर करी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। मैम, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, एक और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं फिर कहना चाहूंगी कि AI हमारे टूल्स की जानकारी के लिए प्रोडक्शन में मदद करेगा, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की जगह, ओरिजिनलिटी की जगह, जिज्ञासा की जगह, समुदाय की आवाज की जगह AI नहीं ले पाएगा।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
5: जी
4: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
5: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
4: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के

0: उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: Those are a lot of money, my guy! My gun is still working! I'll get these bastards!

0: सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी एक मिसाल है सर।
1: अगला परमवीर चक्र हमारे रेजिमेंट की मैं लेकर आऊंगा।
2: चलती है सांसें जिसकी, हर शख्स वो जिंदा है, जिसके जीने का मकसद हो वही तो बंदा है।
1: लड़ाई होने वाली
2: बनता है

0: हम फौजी हैं, जस्ट फॉर ऑर्डर्स।
1: और तो उसे भी मिला था अब जाने के लिए कमबख्त माना नहीं। लड़ता रहा।
2: एक भी टैंक एक इंच पीछे नहीं हटेगा।
3: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन।

0: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा, छलावट की।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी है।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
2: रिपोर्टर तारा, और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
3: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर, और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
4: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
3: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
4: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
3: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं, और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
4: ये बात है, तो हम बच्चे भी मच्छरों से ठुशुम ठुशुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
3: क्या कहा तुमने?
4: Kids want to know, मिस मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
3: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी, और बहुत सारे अंडे दूंगी।
4: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: होगा जमा, आऊंगी मैं वहाँ वहाँ।
1: चलो दोस्तों, बन जाओ टीम तारा, जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
2: टीम तारा है भैया।
3: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
1: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.
7: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो दादी बोलती है तो दुनिया में सबसे अलग है।
8: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है कि तू क्या चीज है।
9: से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते हैं तो तेरे लिए लिखते।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
1: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है

0: और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

डियर किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: मुकेश ये अभी 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ
1: Get ready.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी

बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें। यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: Now listen girls, please understand. First things first, I only want a shirt.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
3: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
2: खाने में एक चम्मच घी या तेल है जरूरी,
3: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
2: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
3: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
4: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: ना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जाँच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है।

0: इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है,
2: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
3: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.
7: I'm sorry, Nami. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे प्लीज माफ कर दो।
8: It's over. अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ.
1: So what? मैं काम में बिजी था यार. तुम मुझसे मिलना चाहती थी. मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो.
0: You know, Shail, it really hurts.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: दिल्ली मुबारक हो।

0: अरे हमारे यहाँ कचरा तो काम वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे हैं?
1: टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पार्टी।
4: कचरा पार्टी।
5: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है, तो हो जाए कचरा पार्टी।
2: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
5: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
6: कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
1: जो हमें बीमार कर सकते हैं, इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
3: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
1: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
3: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा है।
5: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
1: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
3: बहुत अच्छे तरह, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
7: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दे तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
0: तो अंकल क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
3: नहीं चलो, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
1: वाह, कचरा भी आएगा दोबारा काम। तो ये गया गीले कचरे में,
6: और मेरे पास है सूखा कचरा।
3: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह गड़बड़ी सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया, और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
1: हजारों साल तक सड़ते नहीं
4: और खतरनाक भी होते हैं,
3: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो
1: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाली दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुप गए तो।
7: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना पड़े।
3: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: वाह, बार बार इस्तेमाल।
6: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
0: आइडिया।
3: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है। हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
8: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
2: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.